करती हो तुम? दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है? दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। और जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा आई तो है, किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानी ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की
यही परिभाषा तो हो सकती है कि वहाँ राधा याद करती और वहाँ द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रजम, मैं लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिराद श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके

धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांट। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

क्योंकि इंसान ही नहीं। खुद कृष्ण भी

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे। स्वप्न में

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है।

कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका, भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाएगी।

0: एक रील खत्म नहीं होती कि हम दूसरी देखने लगते हैं। एक नोटिफिकेशन आते ही हम अपना फोन ऑन स्पॉट चेक करते हैं। क्या एक्चुअल में हमारा माइंड हर वक्त कुछ नया मांगने लगा है? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं नया नजरिया। आज हम बात करेंगे द डोपामाइन ट्रैप की बी के सिस्टर्स के साथ। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग
0: ज्योति जी। आज हमारा माइंड ना हर वक्त कुछ नया देखना, सुनना या एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्या हम इंस्टेंट स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं?
2: कह सकते हैं, और आज के समय में तो बिल्कुल कहा जाता है कि हम इसके आदि हो गए हैं। आज हमें तुरंत चेंजेस चाहिए। हमारी खुशी ही परमानेंट नहीं रह रही है। थोड़ी देर के बाद हम न सिर्फ मोबाइल्स में कुछ चीजें देख करके, बल्कि हम रिलेशन में भी बोर हो रहे हैं। हम रिलेशन में भी एक रिलेशन से के साथ ज़्यादा टाइम तक स्पेंड नहीं करते हैं। इसी कारण से आज की डेट में लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, शादी से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कमिटमेंट है, वहाँ एक बाउंडिंग हो गई है कि हमें साथ ही रहना है। आज लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, ये सब चीज़ें क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक जगह पर अपने आप के मन को टिका नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए जो है रिलेशंस में भी, इवन कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से भी परेशान हो जाते हैं। आज के बच्चों को देखें तो पेरेंट्स से भी परेशान है। आज अपने भाई बहनों के साथ भी, फ्रेंड्स भी तुरंत चेंज कर रहे हैं हर एक चीज में। और ये जो चेंज है, ये कहीं ना कहीं हमें समय भी दिखा रहा है। आज आप समय भी देखें, अगर पूरा ईयर हमारा कैसे निकल जाता है, हम कहते हैं अभी तो साल आया था, अभी पूरा भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो वो स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि उसका रीजन है हमारे थॉट बहुत स्पीड से चल रहे हैं, और जितने थॉट स्पीड से चलते हैं उतने हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। हमारे जो कहीं कंसंट्रेशन पावर की आज कमी हो गई है, हमारी जो अंदर की इनर पीस आज हमारा वो कम हो गया है। कारण है कि हम उस दुनिया में भाग रहे हैं। आज किसी को भी आप देखेंगे तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम कहाँ जा रहा है वो कहेंगे वो पता नहीं, वो हमें भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तन से बिजी कम है, मन से ज़्यादा बिजी है। मन जो है उनका बहुत जगह भाग रहा है, भाग रहा है। इसीलिए आज जो है खुशी भी परमानेंट या ज्यादातर एक ही चीज में नहीं रह पाती है, अलग अलग चीजें उन्हें चेंज करके चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कभी कभी फोन पास नहीं होता और बिना किसी काम के भी हाथ ऑटोमेटिकली पॉक की तरफ चला जाता है। शोभा जी, जब फोन ना मिले और रेस्टलेसनेस होने लगे तो क्या ये सिर्फ हैबिट है या माइंड की डिपेंडेंसी?
1: ये बिल्कुल सही आपने पूछा कि आजकल के समय में हम अधिकतर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हम पहले थोड़ा 5 मिनट देखना शुरू करते हैं, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे वो आधे घंटे में भी बदल जाता है। कई घंटों में या कई बार तो पूरा दिन ही हमारा उसमें निकल जाता है। तो धीरे धीरे आज हम उस फ़ोन के डिपेंडेंसी बनते जा रहे हैं, और जैसे ही वो हमसे थोड़ी सी दूर भी छूटता है तो हमें उससे जो है अजीब सा महसूस होता है, रेस्टलेस महसूस होता है, हमें लगता है कि कुछ चीज़ हमसे छिन गई है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा पैदा होती है तो हमें उससे खुशी मिलती है, और जब लगातार उस पर हम बार बार उसमें हम समय देते हैं तो अधिक हमें उससे खुशी मिलती है। लेकिन जब हम उसके आदी हो जाते हैं तो वो एक सैलाब की तरह आता है, और वो हमें खुशी तो देके जाता है, लेकिन जब हमसे वो चीज़ छूटती है तो फिर हमें लगता है कि ये दुनिया ही हमारे लिए ख़त्म हो गई है, और हम बिल्कुल कुछ करने के लायक ही नहीं है, और हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए लोग आजकल मोबाइल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं, और वो उनसे छूट जाता है तो लगता है कि हमारा संसार ही ख़त्म हो गया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल, इमरान हाशमी का शिवम पंडित, एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशन वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।
1: पट्टी को जाके बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पति चला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करे रीस्टार्ट।

restart.

0: आज 10 मिनट शांति से बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन 1 घंटा स्क्रोलिंग करना बहुत इजी। ज्योति जी, क्या हम इतने स्टिमुलेशन के आदि हो गए हैं कि साइलेंस भी बोरिंग लगने लगी है?
1: एक्चुअल में वो लग बोरिंग रहा है, लेकिन कर वही रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: हम इसको कह तो बोरिंग रहे हैं, लेकिन हम उसी तरफ जा रहे हैं। आज अब देखिए, आज अगर हम किसी को बोलते हैं फैमिली में चलो, कहते नहीं आप चले जाओ, हमें घर में ही रहने दो, तो वो अकेलापन ही वो रहना चाहते हैं। एक्चुअल में वो अकेलेपन का कारण क्या है कि वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम कोई हमें किसी भी बात के लिए कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस तरह की लाइफस्टाइल आज हमने अडॉप्ट कर ली है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम सबसे डिटैच होते जा रहे हैं, हम सबसे दूर होते जा रहे हैं। हमें अब लोगों के साथ बैठना ज़्यादा टफ, समय तक हमें वो बोरिंग लगने लगता है। आज जब अकेले भी होते हैं तब भी हम खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम खुश हैं, क्यों? क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उनकी इंजॉयमेंट देख रहे हैं। अब हम वहाँ कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, उनके थॉट डिफरेंट हैं। उन सबको साथ लेके चलना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। आज हम वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज हम अकेलापन फील करते हैं। हम अकेला रहना, बोर होते हुए भी हम अकेले रह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो अच्छा होगा।
1: खाना छड़ पीने की सोच यार, सब बंद पैन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार।
1: पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन।
2: ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: नया नजरिया
4: विद आरजे पलक।
5: हर वक्त कुछ देखते रहना जरूरी नहीं, कभी कभी माइंड को कुछ ना करने की भी जरूरत होती है। शोभा जी, अगर कोई अपना टेंशन और इनर पीस वापस पाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए?
6: देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारे जीवन में जो है अपनी दिनचर्या के साथ साथ अपनी मनचर्या को भी सेट करना जरूरी है। दो चीज़ें हैं, एक दिनचर्या, दूसरा मनचर्या। हम लोग अपने दिनचर्या पर तो ध्यान देते हैं, सुबह कितने बजे उठना है, कौन सा काम किस समय करना है, लेकिन मनचर्या पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए दिनचर्या के साथ साथ मन में भी कोई ना कोई थॉट्स लेकर हम पूरे दिन चलें कि हमें इस समय क्या सोचना है, क्या पॉजिटिव विचार लेकर के चलना है, किस समय क्या बात सोचनी है। तो जब एक सिस्टम बनाएंगे अपने साथ तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो व्यर्थ सोचने की जो हैबिट बन चुकी है या अधिक किसी चीज़ में हम अधिक इंटरेस्ट ले लेते हैं तो बहुत देर तक उसी में ही खोए रहते हैं, तो उससे हम छूट जाएंगे और फिर हमारे अंदर एक जो वापस हमें पीस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जो वापस अपने अंदर हैप्पीनेस चाहिए, वो हमारे अंदर आ सकती है।
7: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
5: बी की सिस्टर्स, थैंक यू सो मच इतनी मीनिंगफुल बातें शेयर करने के लिए।
7: ओम शांति।
5: थैंक यू। दोस्तों, थोड़ा स्क्रोलिंग कम करके कभी अपने माइंड को भी साइलेंस दीजिए। हो सकता है जिस पीस को हम स्क्रीन पर ढूंढ रहे हैं वो हमें थोड़ी देर स्क्रीन से दूर जाकर मिले। मैं हूँ आरजे पलक, आपसे इजाजत लेती हूँ। फिर मिलेंगे नया नजरिया में, एक नए टॉपिक और एक नए नजरिए के साथ। तब तक बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

जय हिंद जय भारत के साथ चले करते हैं आज की सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग सभी को। और देखिए रेडियो महारानी पर मैं आ गई हूँ आज। आई नो आपने आज मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन आज आना और आपसे बातें करना तो बनता ही है ना। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, तो रेडियो महारानी की इंटायर टीम की तरफ से सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर 15 अगस्त की मैं बात करूँ ना, आज का दिन हमें याद दिलाता है उन सभी लोगों के सेक्रीफाइसेस जिनकी वजह से आज हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और अपने तिरंगे को प्राउडली सल्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा क्यों ना आज के दिन मैं आऊं और आपसे बातें करूं। लेकिन सबसे पहले आज मैं अपने दिल से कुछ कहना चाहती हूं। आज़ादी सिर्फ एक हक नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि देश हमसे है और हम देश से। तो भाई फरीदाबाद तैयार हो जाइए, आज का एक पूरा घंटा।

सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

non

चलिए फिर से कहते हैं चिट्ठियों का वो दौर रिवाइव, जहाँ पर चिट्ठियाँ अपने सारे इमोशंस कह देती थी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है एक छोटा सा लेटर ना बहुत बड़ा इमोशन बन सकता है किसी के लिए। और यही लेटर के दौर को फिर से रिवाइव करने के लिए रेडियो महारानी इस बार एक कैंपेन लेकर आया था, जिसका नाम है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम, जहाँ पर हम पहुँचे थे अटारी बॉर्डर उन सभी स्टूडेंट्स के लेटर लेकर जो उन्होंने स्पेशली हमारे आर्मी हीरोज के लिए लिखे थे। तो रेडियो महारानी पर आज के दिन यानी कि इस इंडिपेंडेंस डे आप तक वो सभी आवाजें आएंगी जिन्होंने अपने लेटर्स लिखे हैं, जिसके अंदर वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनकी चिट्ठियां गई हैं सरहद तक। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, आज आप रेडियो महारानी पर सुनेंगे उन सभी आर्मी पर्सनल्स को जो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे 1947 के आसपास के किस्से, वो कहानियां, वो मेमोरीज जो जनरेशन को याद रहनी चाहिए। तो चलिए फिर रेडियो महारानी आज आपको लेकर जाएगा इस इमोशनल जर्नी पर, ये सारी कहानियां आप तक पहुंचेंगी उन्हीं की जुबानी। तो बने रहिए रेडियो महारानी पर एक पैगाम देश के हीरोज के नाम, साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशंस वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूं गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

0: जब बात आजादी के दिन की हो, इंडिपेंडेंस डे की हो और लाल किले का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस बार लाल किले के लिए ये इंडिपेंडेंस डे होने वाला है और भी खास। पहली बार लाल किले के प्राचीर पर एक ऐसी आवाज गूंजने वाली है जो हम सबके लिए एक इमोशन है, वंदे मातरम। सो इस साल कंट्री वंदे मातरम के 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रही है, जिसकी खुशी में लाल किला पर वंदे मातरम गीत सुनाई देगा आपको। आप सोच के जरूर देखेगा, सामने तिरंगा, लाल किला और हवा में गूंजता हुआ वंदे मातरम। ये सिर्फ एक गीत नहीं, जनरेशन से जुड़ा हुआ एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो देश के लिए प्राइड को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। तो इस इंडिपेंडेंस डे एक सेलिब्रेशन और स्पेशल बनाते हैं। वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ाइए क्योंकि बजने वाला है आज एक स्पेशल गीत वंदे मातरम। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: ऐ वतन, ऐ वतन।

ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आदन स्वरूप हूँ और रेडियो महारानी से जुड़ा हूँ एक पैगाम देश के हीरोज के नाम प्रोग्राम से। इस पूरे 15 अगस्त 2026 पे मैं अपने पूरे देशवासियों के लिए एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा देश है ये आप में और मेरे सब के मिलकर के ही बनता है। इसमें मैंने देश की सेवा करी है तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये सेवा आप भी अपने घर बैठे कर सकते हैं देश को सुदृढ़ करके। जय हिंद।

आज इंडिपेंडेंस डे है, सभी के हाथ में तिरंगा तो जरूर नजर आएगा और तिरंगा नजर आने के बाद बहुत सारी सेल्फियां भी क्लिक होनी है। लेकिन आपको पता है सेलिब्रेशन के बाद तिरंगे को सेफली कहाँ रखना होता है, कैसे फोल्ड करना होता है और कैसे स्टोर करना होता है, अक्सर हमें यही नहीं पता होता और यही रीजन होता है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के ठीक एक दिन बाद हमारा तिरंगा हमें कहीं सड़कों पर मिलता है, कहीं ऐसी जगह पर मिलता है जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आ गई हूँ, अगर आपने तिरंगा लिया है तो आपको उस तिरंगे को किस तरह से स्टोर करना है। तो देखिए, हर साल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आती है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपने फ्लैग को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है एंड उसके बाद जो सैफ्रन एंड ग्रीन बैंड है उसको आपको व्हाइट बैंड के नीचे फोल्ड करना है। ये दो सिंपल स्टेप करने के बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको व्हाइट बैंड को इस तरह से फोल्ड करना है कि जो हमारा अशोक चक्र है वो क्लियरली विजिबल हो और ठीक इसी तरह से सैफ्रन एंड ग्रीन बैंड्स भी थोड़े बहुत दिखने चाहिए। और बस इसी तरह से आपको फोल्डेड फ्लैग को कैजुअली कहीं भी नहीं रखना है, उसे रिस्पेक्ट के साथ पाम्स या फिर आर्म्स पर कैरी करके प्रॉपरली स्टोर करना है। बस ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि बात जब तिरंगे की आती है ना तो तिरंगा सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारा प्राइड है और हम कितना इजीली अपने प्राइड को कहीं भी रख देते हैं। तो आज आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टूवर्ड्स योर नेशन। सो इस बार आप जब भी तिरंगा फोल्ड करेंगे ये चीजें याद रखिएगा, बिकॉज सेलिब्रेशन खत्म हो सकता है लेकिन तिरंगे की रिस्पेक्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। आप सभी को रेडियो महारानी की एंटायर टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, रिस्पेक्टफुली सभी को ट्रीट कीजिएगा और जय हिंद जय भारत। मिलेंगे मंडे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

कुछ खत ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस उन्हें सही जगह तक पहुंचा देना ही काफी होता है। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। 15 अगस्त आज है और इंडिपेंडेंस डे की बात करते हुए हम अक्सर तिरंगे की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी बात करना शायद सबसे जरूरी है। तो बस इसी सोच के साथ रेडियो महारानी ने शुरू किया है ये कैंपेन एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। इस कैंपेन में हमने फरीदाबाद के अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स और शहर के कई ऑफिशियल्स से एक छोटा सा काम कराया। उन्होंने देश की सरहद पर तैनात हमारे सोल्जर्स के नाम खत लिखे। अब किसी खत में ग्रेटिट्यूड था, किसी में सवाल थे, किसी में एक बच्चे की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वो लोग कैसे रह रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर रहते हैं। और फिर इन खतों को हमने सिर्फ कलेक्ट करके रख नहीं दिया बल्कि हम उनको लेकर गए अटारी वाघा बॉर्डर पर, जहाँ हर दिन तिरंगे के सामने हमारे जवान खड़े होते हैं, जहाँ यूनिफॉर्म सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हमारी कोशिश बस इतनी ही थी कि फरीदाबाद से निकली छोटी सी आवाज सरहद तक पहुँचे, और अब इसी पैगाम को एक कदम और आगे लेकर जा रहे हैं हम। बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जो हमें अपनी जिंदगी के

0: सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

but no, please.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेणु भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूं अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

14 अगस्त 1947 ये वो रात थी जिसका इंतजार भारत ने लगभग 190 साल तक किया था। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग मौजूद थे। चांदनी चौक से लेकर इंडिया गेट तक हर तरफ जश्न का माहौल था। लोगों के हाथों में तिरंगे थे और आंखों में आजादी के सपने। उस दौर में हर घर में टेलीविजन नहीं होता था, इसलिए लोग रेडियो के आसपास इकट्ठा हो गए थे। हर किसी को आधी रात का इंतजार था। रात 11 बजे के बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे आज पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल कहा जाता है, जहां भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई। जैसे जैसे 12 के करीब पहुंच रही थी, पूरे देश की धड़कनें तेज हो रही थी। और फिर 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण दिया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये शब्द रेडियो के जरिए पूरे भारत में गूंज उठे। लेकिन उस खुशी के बीच एक गहरा दर्द भी था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और हजारों शहीद उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं थे। और इसी वक्त भारत का विभाजन भी हो रहा था। लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर थे। इसीलिए आजादी की वो रात सिर्फ जश्न की रात नहीं थी, वो बलिदान, आंसू और उम्मीदों की भी रात थी। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, तो ये याद रखें, आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली थी। इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया।

मेरा नाम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप है और मैंने 2024 में प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया था। मैं फरीदाबाद का ही निवासी हूँ और फरीदाबाद में ही जब यहाँ पे आया रेडियो महारानी के ऑफिस में तो मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं यहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था और मुंजाल, ये मैंने पुरानी दुकानें देखी बुक स्टोर्स की, जहाँ से हम जाके कॉपी पेन खरीदते थे, बुक्स खरीदते थे। तो बहुत कुछ यादें यहाँ पर आकर के ताज़ा हुई, इसके लिए मैं रेडियो महारानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम भी जो देश के वीर हैं वो आप में और हम में से ही निकले हैं हम लोग, हम कोई अलग नहीं है और आप चाहेंगे तो आप भी उन्हीं के श्रेणी में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नौकरी करते हैं हम लोग सारे लोग, अपनी जीविकोपार्जन के लिए हर एक को नौकरी करनी पड़ती है। इस बात को समझिए कि जो देश की सेवा करने जा रहा है वहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ कह लीजिए बैलेंस शीट नहीं बन रही है, वहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, कोई गेंस नहीं है, और किसी कंपनी के लिए या किसी निजी कह लीजिए उद्देश्य के लिए वो सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने देश की संप्रभुता, उसकी बॉर्डर्स को बचाने के लिए कर रहा है। और ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि जो डिफेंस में लोग काम करते हैं उनका मोटिवेशन इज दे आर मोटिवेटेड टू डाई, द हाईएस्ट ऑफ ऑल द मोटिवेशंस इज ऑन टू देम। तो ये आप समझिए कि जिस व्यक्ति अपना सर्वस्व बलिदान करने को उसको ट्रेन किया गया है, समझाया गया है, या उसकी मानसिकता ऐसी बना दी गई है, मेंटल मेकअप ऐसा कर दिया गया है, तो वो जो है धीरे धीरे बिल्डअप होता है ट्रेनिंग के थ्रू। बाद में जब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी लाइफ का एक अलग ही उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य के साथ में हमने जो नौकरी करी उसमें काफ़ी कुछ हमें सिखाया गया, हमने सीखा, और हम तो हमेशा चाहते हैं कि पूरा देश इस चीज़ को समझे कि ये पार्ट थोड़ा पैसिवली उनको भी करना पड़ेगा, हम लोग तो एक्टिवली कर रहे हैं। तो सारे ही, मैं तो मानता हूँ कि सारे ही हमारे हीरोज़ हैं और सारे ही हीरोज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे पहले के हीरोज़ गए हैं उनसे हम आदर्श मानते हुए अपने आगे आने वाले इस जनरेशन्स को, हमारे देश को, जो चारों दिशाओं से आप देख रहे हैं इस जियो पोलिटिकल सिचुएशन के अंदर घिरा हुआ है, जिसके दुश्मन कई जगह से अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और बाहर तो अब साफ दिख रहे हैं। तो हमारे को इस देश को बचाना है, और जब बचाएंगे तो हम अपने आप को ही बचा रहे हैं।

जल रहे हैं दिए घरों में, चमकती हुई शाम है, उदास है उस घर का दिया, सरहद में जिसका जवान है। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आरजे गौरव एंड आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी। 15 अगस्त साल 2026 आज का दिन, और आज हम लोग मना रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। पूरे फरीदाबाद से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने आकर हमें अपने खत दिए। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे खत हमें पकड़ाए ताकि वो सारे खत हमारे देश के जवानों के पास तक जा सके। और जब भी हम लोग देश के जवानों की बात करते हैं तो मन में हमेशा एक सवाल आता है कि हम लोग कितनी आसानी से अपने त्यौहार मना लेते हैं, कितनी खुशहाली से अपनी फैमिली के साथ अपना एक कीमती समय बिता लेते हैं, लेकिन वो लोग खुश नसीब इतने नहीं हैं कि वो हर टाइम अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सके। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली देश को मान लिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको भी हम लोग अच्छा फील कराएं। और इसीलिए रेडियो महारानी ने एक पहल करी और पहल का नाम है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम, जिसमें फरीदाबाद के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने खत लिखे, खुद से अपनी फीलिंग्स लिखी उन खतों में, और वो खत हम तक पहुंचाए, और वो सारे खतों को हम लोग लेकर गए सरहद तक। तो आज के पूरे दिन आप लोग सुनने वाले हैं कुछ अनसुनी कहानियां।

ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आदन स्वरूप हूँ, रेडियो महारानी से जुड़ा हूँ एक पैगाम देश के हीरोज़ के नाम प्रोग्राम से। इस पूरे 15 अगस्त 2026 पे मैं अपने पूरे देशवासियों के लिए एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा देश है ये आप में और मेरे सब के मिलकर के ही बनता है। इसमें मैंने देश की सेवा करी है तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये सेवा आप भी अपने घर बैठे कर सकते हैं देश को सुदृढ़ करके। जय हिंद।

0: Drishti, a privileged student in representing my wonderful institution KR Mangalam World School.
1: साल था 1943। भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में था। उस दौर में अक्सर लोग मानते थे कि जंग लड़ना सिर्फ मर्दों का काम है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। सिंगापुर में नेताजी की मुलाकात एक युवा डॉक्टर से हुई, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें दुनिया आज कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से जानती है। नेताजी ने उनसे एक सपना साझा किया, भारत की पहली महिला सेना बनाने का सपना, और फिर जन्म हुआ रानी झांसी रेजिमेंट का, एक ऐसी महिला रेजिमेंट जिसका जन्म 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। ये दुनिया के कुछ चुनिंदा ऑल वुमेन कॉम्बैट रेजिमेंट में से एक थी। कैप्टन लक्ष्मी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा महिलाओं ने अपनी सरिया छोड़कर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी, उन्होंने राइफल चलाना सीखा, परेड की, जंगल ट्रेनिंग और देश की आजादी के लिए खुद को तैयार किया। इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जो भारत में कभी रही तक नहीं थी, लेकिन उनके दिल में भारत माता के लिए प्यार जरूर था। जब नेताजी इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो ये रानी पूरे गर्व के साथ सल्यूट करती थी। उनका एक ही सपना था, दिल्ली चलो। ये कहानी सिर्फ एक रेजिमेंट की नहीं, ये उस हिम्मत की कहानी है जिसने दुनिया को बताया कि देश शक्ति न मर्द देखती है न औरत। आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने सिर्फ सहयोग नहीं दिया, उन्होंने त्याग किया और जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठाए। कैप्टन लक्ष्मी सहगल और रानी झांसी रेजिमेंट हमें यह दिलाती है कि भारत की आजादी की कहानी भारत की बेटियों के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती।

खुद कैप्टन आनंद स्वरूप और मैं इस वक्त रेडियो महारानी से जुड़ा हुआ हूं और एक प्रोग्राम जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम 15 अगस्त पे ये लोग कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कुछ एक अपना एक किस्सा जो मुझे अब ध्यान आ जाता है वो किस्सा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं उस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे एक एयरफोर्स स्टेशन फाइटर बेस था, वहां पे कार्यरत था और जब वहां पे बैठे हुए थे तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में खाली वॉर्स के टाइम पे ही काम होता है, जब वॉर नहीं होता तब ट्रेनिंग चल रही होती है, जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो उसके ऑडिट्स होते हैं। तो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल की टीम एक हमारे यहाँ आई हुई थी और मेरे साथ में फाइटर जो हमारा स्क्वाड्रन था उनके जो सीनियर थे वो साथ में बैठे हुए थे और कंट्रोल ऑडिट जनरल की टीम के साथ बैठ करके एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग और कह दीजिए रिपेयर्स, उनके जो ओवरऑल्स की हम कुछ ऑब्जर्वेशन उनको बैठे हुए अपना व्यू पॉइंट समझा रहे थे, क्योंकि जब बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको फौज का तरीका समझने में या समझाने में थोड़ा उसको टाइम लगता। तो बीच में ऐसे ही फोन आ गया और जो मेरे सामने बैठे कि आनंद इफ इन केस यू डोंट माइंड में जरा ये सॉर्टिंग करके आता हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँगा। तब तक हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो टेक्निकल के थे या अपना वहाँ पे रडार्स वाले थे, अपना मिसाइल वाले थे, उनको भी बुला लिया। तब तक हम लोग दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करने लगे ऑडिट टीम के साथ। बड़ा दुख की बात है कि आधा घंटे एक घंटे तक मैं सोचा था वो आए नहीं और फिर मैंने फोन करके चेक किया तब पता चला कि जो MiG-21 में थे वो तो सिर्फ

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

किराने की दुकान पर अगर सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि पूरे परिवार की कहानी भी मिल जाइए, मामला है फैमिली किराना स्टोर 2 का। सिनेमा का कैप्सूल में आज बात उस फैमिली की जहां गजानंद की किराने की दुकान है और दुकान के साथ साथ चल रहा है फैमिली ड्रामा का फुल टाइम बिजनेस। श्रीकांत वर्मा की ये कहानी बिल्कुल मिडिल क्लास मोहल्ले वाली फील देती है, जहां खुशी भी कलेक्टिव टेंशन, मतलब घर में किसी एक की प्रॉब्लम हो पूरा परिवार वहां खड़ा होता है। तो बात करूं अगर फैमिली किराना स्टोर की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली और उनके मोहल्ले की एवरीडे लाइफ को लेकर बनी हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। कहानी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी लाइफ है, जिसे देखकर हम बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे मोहल्ले में होता है। और हाँ, सीजन 2 की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, तो गजानंद की दुकान पर शटर अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन कस्टमर्स की एक्साइटमेंट फुल ओपनिंग तक पहुंच गई है। तो अगर आपने गुल्लक वाली सिंप्लिसिटी, टीवीएफ वाला ह्यूमर और मोहल्ले वाली रिलेटेबिलिटी पसंद है, तो भाई अपने किराने की लिस्ट संभाल कर रखिए, गजानन की दुकान फिर लगने वाली है। तो ये था सिनेमा का कैप्सूल।

कैलेंडर पर मार्क डेट नहीं है। इस दिन जब सुबह तिरंगा देखते हैं ना, तो उसके तीन कलर्स के साथ बहुत सारी स्टोरीज भी याद आती हैं। स्टोरीज ऑफ करेज, स्टोरीज ऑफ सेक्रीफाइस, स्टोरीज ऑफ पीपल हु चूज द कंट्री बिफोर देमसेल्व्स। मैं हूँ गीत और रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। और हमारे इस कैंपेन का आइडिया भी यहीं से निकला था। हम चाहते थे कि इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन बनकर ना रह जाए, कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पर एक ट्राई कलर डीपी लगाकर या सोशल मीडिया पर एक पेट्रियोटिक पोस्ट डालकर ये दिन पूरा ना कर दे, बल्कि एक बार उन लोगों तक भी पहुँचे जिनके लिए देश सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि उनकी ड्यूटी है। इसीलिए फरीदाबाद के स्कूल के स्टूडेंट्स और सिटी के ऑफिशियल्स से हमने सोल्जर्स के लिए खत लिखवाए। सोचिए, एक तरफ एक बच्चा बैठा है जिसने शायद बॉर्डर्स को सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, और दूसरी तरफ वही खत एक ऐसे सोल्जर के हाथ में पहुंचता है जो सच में उस बॉर्डर पर खड़ा है। उस डिस्टेंस को ब्रिज करने की छोटी सी कोशिश हमने की। हम उन खतों को लेकर गए अटारी वाघा बॉर्डर और हमारे सोल्जर्स तक हमने वो खत पहुंचाए। और अब इस इंडिपेंडेंस डे पर हम उस कनेक्शन को आपकी आवाज तक वापस ला रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स, जो अपने एक्सपीरियंस और कुछ खास किस्से हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्कूल स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं, जो अपनी आवाज में कुछ स्टोरीज भी लेकर आएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि हम फ्री हैं, ये भी याद दिलाता है कि इस फ्रीडम को सेफ रखने के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और शायद यही है 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने का सबसे खूबसूरत तरीका, अपने हीरोज की कहानी सुनना।

0: मंगलम वर्ल्ड स्कूल फरीदाबाद। साल था 1943। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और इसी दौरान एक आवाज लाखों भारतीयों के दिलों में जुनून भर रही थी। ये आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सिंगापुर में हजारों भारतीयों के सामने नेताजी ने एक ऐसा नारा दिया जो इतिहास बन गया,
1: तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
0: यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारत की आजादी के लिए दिया गया एक आह्वान था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA को मजबूत बनाया। इस फौज में ऐसे सिपाही थे जो कभी किसान थे, कभी मजदूर, कभी दुकानदार। कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, कई ने अपने और कई ऐसे भी थे जो जानते थे कि शायद वो कभी वापस ना लौटे, लेकिन उन सबका एक ही सपना था, आजाद भारत। 1944 में INA के सिपाहियों ने दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए भारत की सीमा की तरफ कदम बढ़ाए। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चों पर उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालात मुश्किल थे, खाना कम था, बारिश भी, बीमारियां भी थी, लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। कई सिपाही जंग के मैदान में शहीद हो गए। उनका नाम शायद हर किताब में ना लिखा गया हो, लेकिन उनका बलिदान भारत की आजादी की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। INA के वीर सिपाहियों ने हमें सिखाया कि कोई भी बड़ा सपना बिना त्याग के पूरा नहीं होता। आज हम आजाद हैं क्योंकि किसी ने अपना घर, अपना सुख और अपनी जिंदगी भारत के नाम कर दी। जय हिंद।

0: रिजर्वेशन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

मेरा नाम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद है और मैं रेडियो महारानी से आपके माध्यम से जुड़ रहा हूँ एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। मुझे कुछ पल अपने याद आते हैं डिफेंस में जॉब के एज ऑफिसर, जिसमें हम लोग पता ही नहीं था कि देश में सुनामी जब आई 2004 में, और मैं उस वक्त एयरफोर्स स्टेशन यालंका में था, एयर इंडिया शोज में फाइनेंस एस्पेक्ट देखता था वहाँ पे, तो पता चला कि रातों रात हमारे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि जो सुनामी जब आई थी तो कार निकोबार जो एयरफोर्स स्टेशन था पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया था, खत्म हो गया था। सुनामी के बारे में आप सबको ही पता है कि 2004 की सुनामी 9.3 मैग्नीट्यूड की थी और उसके अंदर आप कह लीजिए कितना नुकसान हुआ था, और हमारे 122 एयर वॉरियर्स एंड फैमिलीज वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो थी अपना खत्म हो गई थी। नुकसान ऐसा भारी हुआ था पूरी जान माल का, और कितने ही मतलब देशों में भी 1.5-2 लाख लोगों की तो लाइफ उसमें चली गई थी। तो अब एयरफोर्स स्टेशन में हमें उतारा गया, और कह दीजिए कि लाइफ में ऑफिसर होते हैं तो ये सोचते हैं कि सारी फैसिलिटीज हमारे लिए रेडी होती है। वहाँ जब हम उतरे तो आप देखिए कि सब ध्वस्त था और रिमेन्स पड़े हुए थे, और बड़ा ही एक अलग ही था, माहौल ही अलग था करके। रनवे पे ही हम लोग टेंट लगा करके वहीं पे रहे और सारे अपनी रिकवरी करने लगे, अपने कह दीजिए कि इक्विपमेंट्स की, एसेट्स की, और जितने रिमेन्स थे उनको भी उनका प्रॉपर डिस्पोजल। तो ये पता चला है कि भाई आपकी जो फौज की नौकरी है वो टाइम पे भी, मतलब जब वॉर नहीं होता है, इंडिया के तो खाली 5 एक्टिव वॉर्स थे जिसमें 3 पाकिस्तान, 1 चाइना और 1 कारगिल का जो एक सेमी कन्फ्लिक्ट, तो उसके अलावा भी जब वॉर नहीं होता तो डिफेंस वाले लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, और कुछ नेचुरल कंटिजेंसीज हो जाती है उनको भी फेस करना होता है। तो इतनी इश्यूज के साथ में वहाँ पे जा करके जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हमने देखा, जो अब आप देख लीजिए कि रोजमर्रा में हम टीवी पे देखते हैं, इतना मीडिया हमारा जागरूक हो गया है। जो अभी आप ईरान और यूएसए का वॉर देखते हैं, आप देखिए कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। तो उस लेवल से ज्यादा की डिस्ट्रक्शन जो सुनामी ने क्रिएट कर दी थी आइलैंड्स पे, आइलैंड्स के कई हिस्से पानी में चले गए थे, और आप कह दीजिए कि वहाँ 3 से 4 महीने जब मैं रहा तो फिर मार्च के अंदर फिर सुनामी 7.1 की आई थी। तो हम लोगों के पास भागने की जगह भी नहीं थी, लोगों ने बोला कि जल्दी उठो भागो, भागे तो कहाँ भागे, आइलैंड पे तो आप हैं। तो बस ये है कि उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए और भगवान की तरफ देखते थे कि अब आगे तो नेचर के सामने तो कोई भी नहीं देख सकता, उसकी बाइट के सामने जो है। जो मैं तो रिटायर हो गया हूँ आज, मैंने तो अपनी कह लीजिए कि जो अपनी सेवा देनी थी दे दी थी, आगे वाली जनरेशन से भी अपील करूंगा कि आप अपने देश को रक्षा करिए, इस देश के साथ ही आपकी पहचान है, मेरी पहचान है, उस पहचान को बनाए रखिए।

एक सैनिक ने क्या खूब लिखा है ना, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, मैं हूँ आरजे गौरव एंड आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। 15 अगस्त 2026 और आज हमारा कैंपेन का आखिरी दिन है, मगर ये अंत नहीं है, अंत ही शुरुआत है। और इस पैगाम के तहत हम लोगों ने पूरे फरीदाबाद के स्कूल के बच्चों को मिलकर एकजुट किया और उन बच्चों से हमें मिले 3000 से भी ज़्यादा पत्र। अगर मैं सही से बोलूं तो खत हम लोगों तक पहुंचे थे जिसमें बच्चों ने अपनी फीलिंग्स बयां करी थी, और उन फीलिंग्स में कहीं दर्द था तो कहीं खुशियां थी, कहीं थैंक्स था तो कहीं उनकी दिल की बातें। और वो बच्चों के खत हम लोग यानी कि पूरी रेडियो महारानी की टीम पहुंचा कर आई है सरहद तक। आप लोग इसका पूरा ग्लिम्स देख सकते हैं हमारे रेडियो महारानी के यूट्यूब चैनल पर, हम लोग कैसे फरीदाबाद से हमने कैसे खतों को कलेक्ट किया और फिर उसके बाद कैसे हम लोग इन खत को लेकर पहुंचे अटारी बॉर्डर और वहां पर जाकर जवानों को हैंडओवर किया। तो ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख सकते हैं रेडियो महारानी के इंस्टा और फेसबुक और साथ ही साथ यूट्यूब पर। और इसी के साथ साथ आज पूरे दिन भर आप लोग कहानियां सुनने वाले हैं, कुछ अनसुनी, वो भी बच्चों की जुबानी। फरीदाबाद के डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने ये कहानियां नरेट करी है, तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

हालत थी, कुछ दोस्त थे, आंखों में हजारों ख्वाब थे। किसी ने हंस कर कह दिया, ले बस एक बार।

जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं, सही फैसला चुनने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक बार।

0: नमस्कार, आज मैं भार्गवी तिवारी, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की छात्रा, मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। एक छोटी सी जेल की सेल में 23 साल का एक नौजवान अपने आखिरी दिन गुजार रहा था। नाम था भगत सिंह। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुना दी थी। फांसी में कुछ ही दिन बाकी थे। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बचाने के बारे में सोचते, लेकिन भगत सिंह कुछ और ही सोच रहे थे। वो देश के भविष्य के बारे में लिख रहे थे। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई पत्र और लेख लिखे। उनमें से एक संदेश आज भी हर युवा को प्रेरित करता है। उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके उद्देश्य से होती है। इसी सोच को लोग आज इस पंक्ति में याद करते हैं, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। भगत सिंह जानते थे कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी रह जाएगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनका बलिदान करोड़ भारतीयों के दिल में आजादी की आग जगा देगा।
1: तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला।
0: 23 मार्च 1931 की शाम जब उन्हें फांसी घर की तरफ ले जाया गया, तो उनके चेहरे पर डर नहीं था। वो हंसते हुए आगे बढ़े और उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद,
2: इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
0: उस रात भारत ने अपना एक वीर सपूत खो दिया, लेकिन देश को एक अमर प्रेरणा मिल गई। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि महान जिंदगी सालों से नहीं, सपनों, हिम्मत और उद्देश्य से बनती है। आज हम अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाकर उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।

लव ट्रायंगल अब थिएटर से निकलकर आपके ओटीटी स्क्रीन पर उतरने वाला है। कोकटेल 2 में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना यानी तीन लोग एक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम इतनी कि शायद थेरेपिस्ट भी बोले भाई मुझे इन्वॉल्व मत करो। अब फिल्म अब अगस्त में ओटीटी पर रिलीज हो रही है। जिन लोगों ने थिएटर में इस लव ट्रायंगल को मिस कर दिया था, अब उनके लिए रिमोट ही आपका टिकट काउंटर है। और सबसे मजेदार बात, आजकल रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो, बॉलीवुड को लव ट्रायंगल पर अभी भी भरोसा है। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि कोकटेल 2 अब आपके स्क्रीन पर रिलेशनशिप की नई सर्विंग लेकर आने वाला है।

फिल्म में रेडियो महारानी से जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप है। मैंने 2 साल पहले प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया है और मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। बड़ा ही अच्छा है मेरे लिए कि फरीदाबाद में ही आकर के आपके माध्यम से सामान्य जनता से जुड़ना और अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। तो ये तो एक फ़नी सा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं 1995-96 के अंदर जब ट्रेनिंग के लिए गया तो हम लोगों की सैलरीज बहुत कम होती थी। ऑफिसर की सैलरी 2300 रुपये बेसिक होती थी। तो उसके बाद में कह दीजिए कि मैंने 1997 में शादी भी कर ली। शादी कर तो ली थी मगर वही है कि शादी के बाद में कई खर्चे भी एक्स्ट्रा आते हैं, सब कुछ होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वाइफ की भी होती है, समाज की भी होती है। तो उस हिसाब से एज अ ऑफिसर अपने आप को मेनटेन करने में काफ़ी मेहनत लगती थी क्योंकि तनख्वाह जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो अब वाइफ को भी ये पता चल चुका था कि 20-25 तारीख तक इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है और ये ऑफिसर बेस में ले जाता है खाना खिलाने के लिए और फिर वो बेस में लंपे कर देते थे। तो ऐसे जब भी शॉपिंग करने जाते थे तो ऐसा भी हुआ कि वाइफ ने बोला ये सामान ले लो, तो जेब में पैसे नहीं थे इतने, एडुकेट नहीं थे पैसे। तो धीरे धीरे ये वाइफ की आदत पड़ गई 2-4 महीने में कि जब भी हम मार्केट जाने के प्रोग्राम बनाते थे तो वो पूछती थी पैसे हैं, तो पैसे हैं 2-3 बारी बोलती थी तो मैं भी झल्ला जाता था, बोलता था हाँ है। क्योंकि 1-2 बार ऐसे इंसेंसेस हुए कि उन्होंने कुछ सामान बोला था उतने पैसे हमारे पास नहीं थे। तो अब घर से हम निकल रहे थे तो वाइफ ने 2-3 बारी बोल दिया कि पैसे हैं। तो मैं भी थोड़ा झल्ला आ गया था और मन में थोड़ा था कि यार देखो शादी तो हो गई बट इतने हमारे फाइनेंशियली इतने हम इतना नहीं है हमारे पास में रिसोर्सेस। तो घर से बाहर निकले और बाहर निकल के मोटरसाइकिल जो हमारी मदर ने हमें दिलवाई थी वो मेरे पास थी। निकल रहे थे तो बाहर दूर सामने वाले ब्लॉक में मेरे एक पड़ोसी खड़े हुए थे किशोर। उन्होंने ज़ोर से पूछा मुझसे पैसे हैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे हैं या नहीं है आपको उससे क्या करना है। तो वो फिर चिल्ला के बोले आनंद मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं। तो मैं इतना लज्जित हुआ कि मेरी परसेप्शन ऐसी बन चुकी थी कि हर कोई मुझे पैसे के लिए पूछ रहा है और वो बेचारे मेरा हालचाल पूछ रहे थे। तो मैं इस चीज़ को क्षण को याद करता हूँ कि इससे पता चलता है कि हम कुछ चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, उनको सोच लेते हैं कि इन्हीं के ऊपर बात हो रही है। तो वो अपनी परसेप्शन से जो उन्होंने अच्छी बात भी पूछी थी उसको मैंने ऐसा लबादा ओढ़ दिया कि वो मुझे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं करके। तो ये बहुत ही फनी मोमेंट है मेरी लाइफ का, इसको कम्युनिकेशन गैप कह दीजिए या सेल्फ परसेप्शन मेरा ऐसा था। तो इस पर आज भी अगर मैं इसको याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ।

0: जंगा हम ही लड़ेंगे।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट खिलाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

नमस्कार एवरीवन, आई एम साई रक्षिता, द कल्चरल हेड ऑफ मनुस्मृति स्कूल. टू आवर ब्रेव सोल्जर्स नमस्कार. आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू ऑल द ब्रेव सोल्जर्स आउट देयर. आप हमारे देश के रियल हीरोज हो. व्हाइल वी स्लीप पीसफुली इन आवर होम्स, यू स्टैंड फियरलेसली एट द बॉर्डर्स प्रोटेक्टिंग आवर नेशन डे एंड नाइट. योर करेज, सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस सर्विस इंस्पायर एवरी इंडियन टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. विद डीपेस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट.

पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करे रिस्टार्ट।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

एक तरफ है हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, जिनकी दुनिया क्लासरूम्स, होमवर्क्स, फ्रेंड्स और ड्रीम्स से शुरू होती है, और दूसरी तरफ है हमारे सोल्जर्स, जिनकी दुनिया में ड्यूटी, डिसिप्लिन और सबसे पहले देश आता है। इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच डिस्टेंस बहुत है, लेकिन एक चीज दोनों को कनेक्ट करती है, इंडिया। मैं हूँ गीत और रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। हमने इसी कनेक्शन को महसूस किया था जब फरीदाबाद के स्कूल्स के बच्चों ने सोल्जर्स के लिए खत लिखे थे। बच्चों ने अपने मन की बातें लिखी, किसी ने थैंक यू कहा, किसी ने सोल्जर की लाइफ को लेकर सवाल पूछे, किसी ने बस इतना लिखा कि आप अपना ख्याल रखिए। छोटे छोटे वर्ड्स थे लेकिन इमोशंस बहुत बड़े थे। और इन खतों को लेकर हम पहुंचे अटारी वाघा बॉर्डर, जहां जाकर एहसास हुआ कि हम जो चीज यहां बैठकर एक सिंपल लेटर समझ रहे थे, वो किसी सोल्जर के लिए उसके घर से आई एक छोटी सी आवाज भी हो सकती है। और अब इस कहानी का अगला चैप्टर है। बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स, जो अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ यादगार किस्से हमें सुनाने वाले हैं, और हमारे स्कूल स्टूडेंट्स भी हमें कुछ कहानियां सुनाने वाले हैं। शायद किसी बच्चे को किसी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले, शायद किसी को पहली बार समझ आए कि यूनिफॉर्म के पीछे एक इंसान होता है, और शायद किसी को यह एहसास हो कि

0: करो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: आपका अकाउंट खतरे में है सर।
1: हेलो सर, हेलो सर,
0: पहले डराए फिर

स्मार्ट बनो प्लीज।

0: नमस्कार, आज मैं जागृत गौर, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद का छात्र। साल था 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में जोर पकड़ चुका था। हर शहर, हर गांव और हर गली में आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी अपना योगदान दे रहे थे। आज की कहानी है एक ऐसे ही स्कूल स्टूडेंट की, जिसका नाम इतिहास की किताबों में शायद ना हो, लेकिन जिसका हौसला किसी वीर सेनानी से कम नहीं था। एक गांव में आज़ादी का जुलूस निकल रहा था। सबके हाथों में तिरंगा था। सब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे।
1: भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: जुलूस के सबसे आगे एक छोटा सा लड़का तिरंगा लेकर चल रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल होगी। तभी ब्रिटिश पुलिस ने जुलूस रोक दिया। लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया गया, लेकिन वो बच्चा नहीं रुका। वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ता रहा। एक पुलिस अफसर ने उससे झंडा नीचे करने को कहा। लड़के ने मजबूती से तिरंगे को पकड़ा और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, झंडा झुकेगा नहीं। पुलिस ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने तिरंगा और मजबूती से थाम लिया। उस पल उस बच्चे की हिम्मत देखकर पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। जो लोग डरकर पीछे हट रहे थे, वो दोबारा आगे बढ़ने लगे। एक बच्चे की हिम्मत ने सैकड़ों लोगों में नया हौसला भर दिया। आजादी की लड़ाई हमें सिखाती है कि हिम्मत का संबंध उम्र से नहीं होता। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल एक छोटा सा बच्चा भी बन सकता है। और जब इरादे मजबूत हों तो सच में झंडा कभी नहीं झुकता। जय हिंद, वंदे मातरम।

हे सिनेमा लवर्स, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ हर कैप्सूल में मिलता है सिनेमा की दुनिया का एक फ्रेश अपडेट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वो बातें जो शायद आपने अभी तक मिस कर दी हैं। तो आज का कैप्सूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स को हेडफोन्स लगाकर फुल फील के साथ सुना है, क्योंकि एक कल्ट क्लासिक अब अपना अगला चैप्टर लेकर वापस आ रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवारापन 2। 2007 में आई आवारापन कोई टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं थी, एक्शन था, इमोशंस थे, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी थी उसका सोल। इमरान हाशमी का शिवम पंडित एक ऐसा कैरेक्टर जो बोलता कम था लेकिन ऑडियंस से सीधा कनेक्ट कर जाता था। और ऑनेस्टली उस फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में सेफ्टी से रखा हुआ है। अब लगभग 20 साल बाद शिवम पंडित फिर से लौट रहा है। आवारापन 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में वही इंटेंस इमरान हाशमी वाइब देखने को मिल रही है, एक्सप्रेशंस वही, साइलेंस वही, लेकिन कहानी इस बार पहले से कहीं ज्यादा लेयर्ड और एक्शन पैक्ड लग रही है। फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल्स में है, तो कास्टिंग भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे बॉलीवुड में सीक्वल बनाना सबसे रिस्की गेम है, क्योंकि ऑडियंस टिकट सिर्फ नई स्टोरी देखने के लिए नहीं खरीदती, वो अपनी पुरानी मेमोरीज भी साथ लेकर आती है। और आवारापन जैसी फिल्म के फैंस की एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने सिर्फ नाम कैश करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस ओरिजिनल इमोशन को भी पकड़ने की कोशिश की है जिसने पहली फिल्म को कल्ट बनाया था। अब देखना यह है कि आवारापन 2 वही मैजिक रिक्रिएट कर पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ट्रेलर ने फैंस की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ा दी है। तो अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है, एक बार जरूर देखिए, क्योंकि कुछ स्टोरीज नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं, अपने इमोशंस की वजह से याद आ जाती है। मैं हूँ गीत और ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा गुप्ता।
1: मेरी पहली पोस्टिंग एक इंसर्जेंसी वाले एरिया में हुई। मैं उस यूनिट के इतिहास में डिप्लॉय की गई पहली महिला अधिकारी थी। मेरे हेडक्वार्टर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक इलाके में मुझे किसी काम से भेजा गया विद इंस्ट्रक्शंस कि कहीं पर भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। सिविल कपड़ों में और लोकल्स की तरह बर्ताव करने के बावजूद मुझे समझ आ गया कि मेरी पहचान हो चुकी है। इस एरिया में पहले भी कई सिपाही शहीद हो चुके थे। वह एहसास काफी गहरा था। उस पल मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आई। हमारे पास इंटेलिजेंस है, ट्रेनिंग है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन सामने वाला भी कम तैयार नहीं है। मेरे लिए यह बहुत चौंकाने वाला अनुभव था। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि काउंटर इंसर्जेंसी में आपको हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला आपको उतनी ही बारीकी से देख रहा होता है जितनी बारीकी से आप उसे

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं आरजे गौरव आप सभी के साथ, एंड हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। कभी कभी एक छोटा सा कागज और उस पर लिखे कुछ शब्द किसी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा बन जाते हैं। फरीदाबाद के स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों ने भी कुछ ऐसे ही पैगाम लिखे हैं। देश के सरहदों पर खड़े हमारे हीरोज के नाम, किसी लेटर में थैंक यू, किसी में एक सवाल और किसी में थी एक सोल्जर के लिए दिल से निकली हुई दुआ। हमने इन बच्चों के इन पैगामों को उन सैनिकों तक पहुंचाया जो अपने घर परिवार से दूर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं, और आज पूरे दिन यानी कि 15 अगस्त 2026 को पूरे दिन आप सुनेंगे उन्हीं हीरोज की कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां, बिल्कुल बच्चों की जुबान में। और रेडियो महारानी ने इन सारे खतों को अच्छे से कैसे पहुंचाया इसका पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख सकते हैं रेडियो महारानी के इंस्टा और यूट्यूब हैंडल्स पर। आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए रेडियो महारानी, वहीं पर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार बच्चों ने ये सारे खत लिखे और कैसे हम वो खत लेकर पहुंचे अटारी बॉर्डर। करेंगे इसके बारे में और भी बात, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

नमस्कार, आई एम रीत फ्रॉम मनस्कृति स्कूल। साल था 1942। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। अंग्रेजी हुकूमत घबरा गई थी। देश के बड़े नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे। अखबारों पर सेंसरशिप थी। रेडियो पर अंग्रेजों का कब्जा था। ऐसा लग रहा था जैसे आजादी की आवाज को दबा दिया गया हो। लेकिन उसी समय एक 22 साल की युवा छात्रा ने फैसला किया कि भारत की आवाज कभी खामोश नहीं होगी। उसका नाम था उषा मेहता। 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता और उनके साथियों ने मुंबई में एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया। इसका नाम था द कांग्रेस रेडियो। हर ब्रॉडकास्ट की शुरुआत एक लाइन से होती थी, दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर्स फ्रॉम समवेयर इन इंडिया। ये समवेयर इन इंडिया अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा राज बन गया। इस रेडियो के जरिए आजादी की खबरें, गांधी जी के संदेश और फ्रीडम फाइटर्स की जानकारी पूरे देश में पहुंचने लगी। ब्रिटिश पुलिस लगातार स्टेशन को ढूंढ रही थी, इसीलिए हर कुछ दिनों में रेडियो का लोकेशन बदल देते थे। कभी किसी घर में, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी छोटे कमरे में। लगभग 3 महीने तक ये रेडियो ब्रिटिश को चकमा दे रहा था। आखिरकार नवंबर 1942 में ब्रिटिश पुलिस ने स्टेशन का पता लगा लिया और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तब तक उनकी आवाज पूरे देश में एक नई उम्मीद जगा चुकी थी। उषा मेहता ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने माइक्रोफोन उठाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी एक आवाज भी उतनी ताकतवर होती है जितनी एक सेना। और इसीलिए आज भी उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, सही संदेश और सच की आवाज इतिहास बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा गुप्ता। मेरी सर्विस के शुरुआती दिनों की बात है। ऑपरेशन राइनो के दौरान हम लगातार ऑपरेशनल ड्यूटी पर रहते थे। हमारी लोकेशन से कई बार शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जाते थे, तिरंगे में लिपटे हुए कितने ही जवान, उनको श्रद्धांजलि देना और फिर उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके परिवार तक रवाना करने की जिम्मेदारी हमारी थी। यह मेरी सर्विस का पहला ही महीना था। फिर दृश्य देखकर अपने दिल को मजबूत करना पड़ता था, क्योंकि आप जिन जवानों के साथ कुछ समय पहले तक काम कर रहे हो

हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेंदीरता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रादर आई वुड से एक अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक, यानी कि मेंटल हेल्थ इन प्रेगनेंसी पर। मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसके बारे में शायद एक इंसान खुद ही नहीं जान पाता कि उसको ये प्रॉब्लम है या उसके साथ ये नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है, कि बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का, वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट खिलाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है, देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कॉलिंग।

अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे

कुछ जगह सिर्फ प्लेसेस नहीं होती, वो इमोशन बन जाती हैं। अटारी वाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ तिरंगा देखते ही पेट्रियोटिज्म सिर्फ महसूस नहीं होता, जैसे हमें सामने दिखाई देने लगता है। मैं हूँ गीत और रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। और इसी बॉर्डर तक हम लेकर गए फरीदाबाद के स्कूल्स और सिटी ऑफिशियल्स की तरफ से लिखे हुए वो खत जो हमारे सोल्जर्स के नाम थे। सोचिए इन लेटर्स की जर्नी कितनी खूबसूरत थी। एक खत फरीदाबाद के किसी स्कूल से निकला, उसमें एक बच्चे ने अपने मन की बात लिखी और वो खत हमारे पास आया और फिर हम उसे लेकर पहुंचे बॉर्डर, यानी एक सिविल की भावना सी

उस जगह तक जहां देश की सीमा की हिफाजत करने वाले हमारे जवान मौजूद हैं। और यही इस कैंपेन की सबसे खूबसूरत बात है। हम चाहते थे कि इंडिपेंडेंस डे पर सिर्फ हम सोल्जर्स को याद ना करें, बल्कि उन्हें ये भी महसूस कराएं कि देश के लोग उन्हें याद करते हैं। कि कहीं फरीदाबाद में कोई बच्चा है जो उनके बारे में सोच रहा है, कोई टीचर है जो उनके लिए कुछ लिख रहा है, कोई ऑफिशियल है जो अपना मैसेज उन तक पहुँचा रहा है। और अब उन्हीं हीरोज की स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे साथ कुछ ब्रिगेड और कर्नल्स जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनमें आपको करेज मिलेगा, इमोशन मिलेगा और शायद एक नया पर्सपेक्टिव भी। और हमारे साथ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं जो कुछ कहानियां हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ मैप्स पर नहीं होते, उनके पीछे बहुत सारी लिव्स मेमोरीज और स्टोरीज होती हैं। और इस 15 अगस्त हम उन्हीं स्टोरीज को आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं, सही फैसला चुनने का एक मौका देती है। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक बार, तो खुद से कहना नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है।

नमस्कार, आई एम मुदिता फ्रॉम मनस्वती स्कूल। 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हो गया था। सड़कों पर जश्न था, तिरंगे लहराए जा रहे थे, लोग नाच रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल रही थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का फैसला हो चुका था, एक नई सरहद खींच दी गई थी और अचानक लोगों को बताया गया कि उनका घर अब किसी दूसरे देश में है। सोचिए, जिस घर में आप पैदा हुए, जहां आपकी बचपन की यादें हैं, जहां आपके पुरखों की तस्वीरें लगी हैं, उसे एक दिन में छोड़कर जाना पड़े। 1947 में लगभग 1.4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इतिहास में इसे दुनिया के सबसे बड़े मास माइग्रेशन में से एक माना जाता है। हर तरफ अफरा तफरी थी, रेलवे स्टेशन लोगों से भरे हुए थे। कई परिवार सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर निकल पड़े। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। कई लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों को कभी दोबारा नहीं देख पाए। उन दिनों रिफ्यूजी ट्रेन्स चलती थी, ऐसी ट्रेन्स जो लोगों को नई सरहद के उस पार ले जाती थी। लेकिन हर ट्रेन अपने साथ कहानियां लेकर चलती थी, किसी के बिछड़ने की, किसी के सब कुछ खो देने की और किसी के नए जीवन की शुरुआत की। आजादी मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत से लोगों ने अपने घर, अपने रिश्ते और अपने यादों से चुकाई। पार्टीशन की कहानी हमें याद दिलाती है कि नफरत सिर्फ दीवारें खड़ी करती है, जबकि प्यार और भाईचारा देश बनाते हैं। आज अगर हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें हमेशा एकता, सद्भावना और इंसानियत को अपनाना होगा। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

मेरा नाम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद है और मैं रेडियो महारानी से आपके माध्यम से जुड़ रहा हूँ एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। मुझे कुछ पल अपने याद आते हैं डिफेंस में जॉब के एज ऑफिसर, जिसमें हम लोग पता ही नहीं था कि देश में सुनामी जब आई 2004 में, और मैं उस वक्त एयरफोर्स स्टेशन यालांका में था, रेडियो शोज में फाइनेंस एस्पेक्ट देखता था वहाँ पे, तो पता चला कि रातों रात हमारे लोगों के एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि जो सुनामी जब आई थी तो कार निकोबार जो एयरफोर्स स्टेशन था पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया था, खत्म हो गया था। सुनामी के बारे में आप सबको ही पता है कि 2004 की सुनामी 9.3 मैग्नीट्यूड की थी और उसके अंदर आप कह लीजिए कितना नुकसान हुआ था, और हमारे 122 एयर वॉरियर्स एंड फैमिलीज वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो थी अपना खत्म हो गई थी। नुकसान ऐसा भारी हुआ था पूरी जान माल का, और कितने ही मतलब देशों में भी अराउंड 1.5-2 लाख लोगों की तो लाइफ उसमें चली गई थी। तो अब एयरफोर्स स्टेशन में हमें उतारा गया, और कह लीजिए कि लाइफ में ऑफिसर होते हैं तो ये सोचते हैं ये सारी फैसिलिटीज हमारे लिए रेडी होती है। वहाँ जब हम उतरे तो आप देखिए कि सब ध्वस्त था और रिमेन्स पड़े हुए थे, और बड़ा ही एक अलग ही था, माहौल ही अलग था करके। रनवे पे ही हम लोग टेंट लगा करके वहीं पे रहे और सारे अपनी रिकवरी करने लगे, अपने कह दीजिए कि इक्विपमेंट्स की, एसेट्स की, और जितने रिमेन्स थे उनको भी उनका प्रॉपर डिस्पोजल। तो ये पता चला कि भई आपकी जो फौज की नौकरी है वो टाइम पे भी, मतलब जब वॉर नहीं होता है, इंडिया के तो खाली 5 एक्टिव वॉर्स थे जिसमें 3 पाकिस्तान, 1 चाइना और 1 कारगिल का जो एक सेमी कन्फ्लिक्ट, तो उसके अलावा भी जब वॉर नहीं होता तो डिफेंस वाले लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, और कुछ नेचुरल कंटिजेंसीज हो जाती हैं उनको भी फेस करना होता है। तो इतनी इश्यूज के साथ में वहाँ पे जा करके जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हमने देखा, जो अब आप देख लीजिए कि रोजमर्रा में हम टीवी पे देखते हैं, इतना मीडिया हमारा जागरूक हो गया है। जो अभी आप ईरान और USA का वॉर देखते हैं, आप देखिए कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। तो उस लेवल से ज़्यादा की डिस्ट्रक्शन जो सुनामी ने क्रिएट कर दी थी आइलैंड्स पे, आइलैंड्स के कई हिस्से पानी में चले गए थे, और आप कह दीजिए कि वहाँ 3 से 4 महीने जब मैं रहा तो फिर मार्च के अंदर फिर सुनामी 7.1 की आई थी। तो हम लोगों के पास भागने की जगह भी नहीं थी, लोगों ने बोला कि जल्दी उठो भागो, भागे तो कहाँ भागे, आइलैंड पे तो आप हैं। तो बस ये है कि उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए और भगवान की तरफ देखते थे कि अब आगे तो नेचर के सामने तो कोई भी नहीं देख सकता, उसकी बाइट के सामने जो है। जो मैं तो रिटायर हो गया हूँ आज, मैंने तो अपनी कह लीजिए कि जो अपनी सेवा देनी थी दे दी थी, आगे वाली जनरेशन से भी अपील करूंगा कि आप अपने देश को रक्षा करिए, इस देश के साथ ही आपकी पहचान है, मेरी पहचान है, उस पहचान को बनाए रखिए।

नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 थंबर। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय लेटर टू द पैट्रनिस्ट और द सोल्जर। यू आर आवर हीरो, आवर प्रोटेक्टर, आवर वॉरियर हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर दिस कंट्री, द लैंड एंड एलिमेंट्स। यू कॉल दिस कंट्री एज मा, अ रिस्पेक्टेड टर्म फॉर मॉम। I feel sorry for all the sisters whose brother have died and those who cannot visit their family even thrice a year on festivals. For those brothers who have died, remember the ones you love never truly leaves you. The life you are enjoying has cost you someone, their husband, brother, uncle, nephew and father. Thank you.

भाई बेटा बाप तो किसी का मीत घर आया है, सब खुश हैं, एक फौजी जंग जीत कर आया है। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं आरजे गौरव आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। आपने कभी सोचा है, एक स्कूल या कॉलेज का बच्चा जब किसी सैनिक को लेटर लिखता है तो उस लेटर में क्या लिखता होगा, जरा सोचो। फरीदाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों ने अपने दिल की बात कागज़ पर उतारी और भेजे पैगाम उन हीरोज़ के नाम जो हमसे हजारों किलोमीटर्स दूर थे, देश की हिफाजत में खड़े हैं। हमने इन लेटर्स को सैनिकों तक पहुंचाया है और फिर सामने आई कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ एक सोल्जर की ड्यूटी के बारे में नहीं है, ये कहानियां हैं हिम्मत की, सेक्रीफाइस की, फैमिली से दूर रहने की और उस जज्बे की जो एक यूनिफॉर्म को सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं रहने देता। तो आज के पूरे दिन आप सुनेंगे कुछ अनसुनी कहानियां, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां और कुछ ऐसे किस्से जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो जुड़े रहिए रेडियो महारानी के साथ, क्योंकि देश के हीरोज की ये अनसुनी कहानियां आप सुनेंगे हमारे फरीदाबाद के स्कूल के बच्चों की जुबान में। और इसी के साथ साथ अगर आप ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो रेडियो महारानी के यूट्यूब हैंडल पर जरूर आइए, वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम और मैं हूँ आरजे गौरव।

0: मैं पब्लिक स्कूल से आई हूँ, मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। एक छोटी सी जेल की सेल में 23 साल का एक नौजवान अपने आखिरी दिन गुजार रहा था, जिसका नाम था भगत सिंह। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुना दी थी। सोचिए उस पल की कल्पना, जब किसी इंसान को बताया जाए कि उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ घड़ियां, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। फांसी में कुछ ही दिन बाकी थे। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बचाने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन भगत सिंह कुछ और ही सोच रहे थे। वहां वो देश के भविष्य के बारे में लिख रहे थे। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई पत्र और लेख लिखे और अपनी बातों से लाखों दिलों में उम्मीद जगा दी, साथियों को हिम्मत दी। उसने अपने परिवार से कहा कि आंसू ना बहाएं, बल्कि गर्व से कहें उनका बेटा देश के लिए खड़ा हुआ है।
1: नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की माँ, तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला।
0: उसमें से एक संदेश आज भी हर युवा को प्रेरित करता है। उनका मानना था कि इंसान की पहचान उसकी उम्र से नहीं, उसके उद्देश्य से होती है। इसी सोच को लोग आज इस पंक्ति में याद करते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। भगत सिंह जानते थे कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी रह जाएगी, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उनका बलिदान करोड़ों भारतीयों के दिल में आजादी की आग लगा देगा। 23 मार्च 1931 की शाम जब उन्हें फांसी घर की तरफ ले जाया गया, वहां एक अलौकिक शांति थी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग गर्व से खड़े थे, कुछ लोगों के होठों पे नारे थे, लेकिन भगत सिंह उनके चेहरे पर डर नहीं था। वो हंसते हुए आगे बढ़े और कहा, मेरी मौत मकसद नहीं बल्कि तूफान की शुरुआत है। और उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
2: इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
0: भारत ने अपना एक वीर सपूत खो दिया, लेकिन देश को एक अमर प्रेरणा मिली। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि महान जिंदगी सालों से नहीं बनती, सपनों, हिम्मत और उद्देश्य से बनती है। आज भी उनकी याद हमें कहती है कि डर को मात दो, न्याय की आवाज बुलंद करो और अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहो। इनकलाब जिंदाबाद।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

कर्नल पूजा गुप्ता। एक दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, मेरा बच्चा खो गया था। करीब 13 साल की सर्विस थी मेरी। मेरे और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अलग अलग जगह थी, दोनों ही फील्ड में थे। मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का था। ऑपरेशनल एरिया होने के कारण घर जाने का कोई समय नहीं था। उस एरिया में जंगल थे, जंगली जानवर थे और लेपर्स का भी डर था, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। एक बार मैं कहीं दिनात थी ड्यूटी पर दूर, और मैंने देखा कि जो व्यक्ति मेरे घर पर होता है जब मैं नहीं होती है, बच्चा स्कूल से आता है, वो भी वहीं पे ड्यूटी पे तैनात। मेरा बच्चा स्कूल से घर आया, घर पर ताला मिला और वो कहीं निकल गया। जब पता चला तो मेरी सांस रुक गई। जीवन के सबसे डरावने पलों में से एक था। आप एक माँ भी हैं और एक आर्मी ऑफिसर भी। उस समय आपके सामने डरने का विकल्प तो है लेकिन घबराने का नहीं। आपके जवान आपके सामने खड़े हैं, उनके सामने आप कमजोर दिखे।

आपके अंदर तूफान चल रहा है, आप उसे दिखा नहीं सकते। मैंने खुद को संभाला और सोचना शुरू किया कि क्या करूं, कैसे करूं। करीब 3 घंटे के बाद मुझे फोन आया कि सड़क पर किसी को मिल गया, जो उसे पहचानता था वो अपने साथ ले गया। मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि वह एक नाइटमेयर था, और शायद आर्मी ने मुझे यही सिखाया था, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो पहले खुद को संभालो फिर परिस्थिति को संभालो।

0: नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 थंब। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय लेटर टू द पैट्रनिस्ट और द सोल्जर। यू आर आवर हीरो, आवर प्रोटेक्टर, आवर वॉरियर हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर दिस कंट्री, द लैंड एंड एलिमेंट्स। यू कॉल दिस कंट्री एज मा, अ रिस्पेक्टेड टर्म फॉर मॉम। I feel sorry for all the sisters whose brothers have died and those who cannot visit their family even thrice a year on festivals. For those brothers who have died, remember the ones you love never truly leaves you. The life you are enjoying has cost you someone, their husband, brother, uncle, nephew and father. Thank you.
1: देश के हीरोज के नाम।

कुछ हटके। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे

जेनरेशन की अपनी स्टोरीज होती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें जेनरेशन बदलने के बावजूद कभी पुराना नहीं होना चाहिए। हमारे हीरोज की स्टोरी, हमारे हीरोज की स्टोरीज ऐसी ही स्टोरीज हैं। हाय, मैं हूँ गीत और रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर ये हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कैंपेन एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। हमने इस कैंपेन की शुरुआत खतों से की थी। फरीदाबाद के स्कूल्स के बच्चों और शहर के ऑफिशियल्स ने सोल्जर्स के नाम लेटर्स लिखे। उन लेटर्स में किसी ने ग्रेटिट्यूड लिखा, किसी ने रिस्पेक्ट और किसी ने अपनी क्यूरियोसिटी, और हम उन लेटर्स को लेकर पहुंचे बॉर्डर, क्योंकि हमारा मानना था कि मैसेजेस तभी कंप्लीट होंगे जब वो उस इंसान तक पहुंचेंगे जिनके लिए वो लिखे गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब हमने सोचा क्यों ना इन हीरोज की कहानी भी लोगों तक पहुंचाई जाए, क्यों ना हमारी यंग जनरेशन सिर्फ ये ना जाने कि कोई सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, बल्कि ये भी जाने कि उसके पीछे की जर्नी क्या है, उनकी लाइफ कैसी रही, उसमें क्या देखा, उन्होंने क्या सीखा। और ऐसे ही कई सवालों के जवाब हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स जुड़ने वाले हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करेंगे, और हमारे साथ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे जो कुछ कहानियां हमें सुनाने वाले हैं। तो आज अगर आप भी किसी ऐसी स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दिल से थोड़ी देर तक नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक रहे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस इंडिपेंडेंस डे पर हमारे पास सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि कहानियों का एक पूरा सफर है, क्योंकि ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

लो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूं। अच्छा, और मैं चांद पर प्लॉट बेच रहा हूं।

0: Hello everyone, I am Niyati and I am from Ideal Public School and I study in 10th grade.
1: साल था 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में जोर पकड़ चुका था। हर शहर, हर गांव और हर गली में आजादी की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी अपना योगदान दे रहे थे। एक गांव में आजादी का जुलूस निकल रहा था। सबके हाथों में तिरंगा था।
2: भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: जुलूस के सबसे आगे एक छोटा सा लड़का तिरंगा लेकर चल रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल होगी। तभी ब्रिटिश पुलिस ने जुलूस रोक दिया। लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया गया, लेकिन वो बच्चा नहीं रुका। वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ता रहा। एक पुलिस अफसर ने उसे झंडा नीचा करने को कहा। लड़के ने मजबूती से तिरंगे को पकड़ा और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, झंडा झुकेगा नहीं। पुलिस ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने तिरंगा और मजबूती से थाम लिया। उस पल उस बच्चे की हिम्मत को देखकर पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। जो डर के पीछे हट रहे थे, वो दोबारा आगे बढ़ने लगे। एक बच्चे की हिम्मत ने सैकड़ों लोगों में एक नया हौसला भर दिया। आजादी की लड़ाई हमें ये सिखाती है कि हिम्मत का समाधान उम्र से नहीं होता। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। और जब इरादे मजबूत हो

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम ब्रिगेडियर तरुण मदान और इस इंडिपेंडेंस डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। डिफेंस फोर्सेस का जीवन एक बहुत ही चुनौती भरा

जीवन होता है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम सब में एक जज्बा होता है, एक जज्बात होता है कि अपने देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो हम सब मुश्किल जो है जूझने के लिए तैयार। कई बार पूछा जाता है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा वो पल था जो आपको डिफेंस सर्विसेज में सबसे अच्छा लगा। आई फील द ग्रैंडेस्ट डे फॉर मी वॉज वेन आई गॉट कमीशन्ड इनटू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। जब आपकी कमीशनिंग होती है और आपके कंधे पे तारा लगता है तो आदमी को बहुत ही मतलब गर्व का एहसास होता है, और उसके साथ साथ जिम्मेवारियां भी आती हैं आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि खाली एक रैंक आपको लगा दिया गया है, इस रैंक के साथ साथ आपके पास ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आती हैं। सो आई फील दैट वॉज द ग्रैंडेस्ट डे दैट आई एवर फेल्ट। के उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे पल आते हैं, आपकी प्रमोशन होती है कहीं, जैसे मेरी फॉरेन पोस्टिंग भी हुई, तो ये सारे अच्छे पल हैं। लेकिन एक जो सराहनीय पल जिसको कहा जाए वो हमारा कमिश्निंग डे होता है। ए वतन जान।

0: मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं, बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग्स से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।
1: डॉक्टर कॉलिंग। पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ, टाइम जा रहा है भाई, तो करे रिस्टार्ट।

नमस्कार एवरीवन, आई एम आयशी तिवारी, द हेड गर्ल ऑफ मनुस्मृति स्कूल. डियर रक्षक्स, आई फील ऑनर्ड टू बी एबल टू राइट अ लेटर टू द पीपल हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री. लोगों में जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करेज यू ऑल शो टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड टू इवन सैक्रिफाइस योर लाइफ ताकि हम एक सुकून की जिंदगी जी सके, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. And second, you spend on the border staying away from the loved ones means a lot to us and reminds us that freedom comes with great responsibilities. आपके इस sacrifice के लिए gratitude express करना through this छोटा सा letter is impossible. But from my whole heart, I just want to say one thing. Thank you so much.

जो पूरी रात जागते हैं। जरूरी तो नहीं कि वो सिर्फ आशिक ही हो, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं अर्जय कौरव एंड आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। कुछ बच्चों ने अपने लेटर्स में सोल्जर्स को थैंक यू कहा। अब आप सोच रहे होंगे कौन से लेटर्स, तो पूरे फरीदाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों ने बहुत सारे लेटर्स लिखे और वो लेटर्स हम लोग असली हीरोज तक पहुंचा कर आए। तो कुछ बच्चों ने सैनिकों से पूछा आप अपने घर को कितना मिस करते हैं, और कुछ ने बस इतना लिखा कि आप बॉर्डर पर खड़े हैं इसलिए हम यहाँ पर सेफ हैं, और कुछ बच्चों ने लिखा मामा आई रियली मिस यू। फरीदाबाद के स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों ने जब ये लेटर्स लिखे तो शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके ये छोटे से पैगाम किसी सोल्जर के लिए कितने ख़ास बन सकते हैं। हमने इन लेटर्स को उन तक पहुँचाया और बदले में हमें मिली कुछ कहानियाँ, कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंसेस जो आमतौर पर हम तक कभी नहीं पहुँचते। और आप भी इन एक्सपीरियंसेस को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे? रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम हैंडल पर आइए, रेडियो महारानी के यूट्यूब हैंडल पर आइए, आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि कैसे स्कूल के बच्चों ने खत लिखे और वो खत हम लोग पहुँचा कर आए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस तक। तो आज पूरे दिन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कुछ अनसुनी कहानियाँ बच्चों की जुबान में, क्योंकि ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

हेलो, हेयर आई एम डॉल सिंह कानी फ्रॉम श्रीराम मॉडल स्कूल। 11 अगस्त 1908, फांसी का दिन आ गया। जेल के बाहर हजारों लोग जमा थे। सब सोच रहे थे कि एक 18 साल का लड़का मौत का सामना कैसे करेगा। खुदराम का जन्म 1800 बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार देखे थे। जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और खेल कूद में व्यस्त रहते, तब खुदराम देश को आजाद करने के सपने देख रहे थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1908 में उन्होंने और उनके साथी प्रफुल्ला चक्की ने ब्रिटिश जज डगलास किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड अपनी कठोर सजाओं के लिए बदनाम था। हमला असफल रहा और खुदराम पकड़े गए। मुकदमा चला, लेकिन जब खुदराम फांसी घर की तरफ बढ़े तो उनके चेहरे पर डर नहीं, एक मुस्कान थी। कहते हैं वो वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उनकी हिम्मत देखकर जेल के अधिकारी भी हैरान रह गए। 18 साल की उम्र में खुदराम बोस भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक बन गए। उन्होंने दुनिया को सिखा दिया कि देश के प्यार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। खुदराम बोस की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जवानी सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, हिम्मत और देश के प्रति समर्पण दिखाने के लिए भी होती है। आज हम देश के लिए ईमानदारी से पढ़कर, कुछ करके और एक जिम्मेदारी नागरिक बनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।

अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपनापन भी है।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम ब्रिगेडियर तरुण मदान और इस इंडिपेंडेंस डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चुनौतीपूर्ण जो अपने जीवन में एक पल जो मैं याद करता हूँ वो है जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था, और क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और हमारी भी कुछ जवान वहाँ डिप्लॉयड थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे दो जवान उसमें मारे भी गए, तो वो एक ऐसा पल था जो आदमी हमेशा जिंदगी में याद करता है कि मतलब कितनी कुर्बानियों के बाद जो हमने करी हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, तो आपको ये जीत हासिल हुई। और तब समझ में आता है कि देश सेवा का असली मतलब जो है वो क्या होता है। सो लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंजिंग, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और जीवन में आप इनको जूझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये है कि मोटिवेशन लेवल आपका हमेशा हाई रहना चाहिए। और देखिए, हम लोग भी जब सीखते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमारे बहुत सारे उस्ताद होते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, भले ही वो बाद में हमारे हमारे अधीन आ जाते हैं या हमारे नीचे काम करते हैं, लेकिन कई जवान ऐसे होते हैं जो एक ऐसा अच्छा उदाहरण पेश करते हैं और आप उनको उस्ताद बोलते हो, जिनसे आप सीखते हो, आप जिंदगी भर जो है उनका आदर करते हो कि उनसे आपने सीखा है, वो आपके गुरु रहे हैं, वो आपके उस्ताद रहे हैं, उन्होंने जो कुछ आप जीवन में कर रहे हो या जो भी आपने सीखा है उन्होंने आपको सिखाया है, तो ये पल हमेशा आपको याद रहते हैं और आप इनको भूल नहीं सकते ऐसे पलों को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और घर से तो आप दूर रहते ही हो, कई बार आप मतलब ऐसे मुश्किल पल आते हैं कि आप घर भी नहीं जा पाते हो,

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता। मैं डायरेक्टर एंड यूनिट हेड यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 फरीदाबाद से आज आप सबके साथ डिस्कस करने आई

नेचुरल हो रहा है या ये फ्लो के साथ चलता रहता है जब तक कि उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम की बढ़ नहीं जाती है। आई फील फिजिकल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इमोशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो फिजिकल और इमोशनल पार्ट है हेल्थ का वो आज की डेट में काफी हद तक कवर हो गया, बिकॉज आजकल चाहे हमारी मदर इन लॉज है या हमारे हस्बैंड्स हैं, बीइंग पार्ट ऑफ एजुकेशन, यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल फैमिलीज, हम लोगों के ये सब केयर हमें बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें लगता है कि हमने अगर किसी फीमेल को इमोशनल केयर दे दी तो शी मस्ट बी डूइंग वेल, क्योंकि हम उसे रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए करा रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ गिविंग द अटमोस्ट केयर टू अ फीमेल, वो फीमेल हो सकता है कि कुछ कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रही हो जो उसे खुद भी नहीं पता चलता है। शुरू में तो जब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो कभी भी अपने हस्बैंड के आगे अचानक से रोने लग जाती है, तो हस्बैंड को ये लगता है कहीं उसे अपनी मम्मा की याद तो नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक से घर में किसी पे भी चिल्ला देती है, तो उन्हें लगता है अच्छा इसने कुछ खाया नहीं होगा इसलिए ऐसा हो गया होगा। फिर अचानक से ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के ऐसे रख देगी या यू नो उसको पता नहीं चलेगा, पेशेंट को खुद को जो फीमेल है उसको पता नहीं चलता है, तो ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई ये सब नॉर्मल हो रहा है, घर के लोगों को भी ये नॉर्मल लगता है। डेफिनेटली यस, कुछ हद तक ये चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो इस तरीके से होते हैं कि वो रोल प्ले करते हैं, तो आपके ये मूड स्विंग्स थोड़े थोड़े जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मैं भी पेशेंट को कहती हूँ कोई बात नहीं, बट अगर ये चीज डेली होने लगे या एक ही दिन में बार बार होने लगे कि एक औरत रोती ही जा रही है लगातार, आपने चुप कराया, आप आइसक्रीम खिलाने ले गए, आप चॉकलेट लाने ले गए, आप उसको घुमाने ले गए, उसके बावजूद भी अगर ये चीज हो रही है देन डेफिनेटली ये चीज नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर कॉलिंग।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: 89.6 रेडियो महारानी. कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके.

अगस्त की सुबह जब तिरंगा लहराता है ना, तो शायद हम सबके मन में एक ही फीलिंग आती है, प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन इस प्राइड को महसूस करने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है उन लोगों की तरफ जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मैं हूँ गीत और रेडियो महारानी 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। इस कैंपेन के जरिए हमने एक छोटी सी कोशिश की, फरीदाबाद के स्कूल के बच्चों और सिटी के ऑफिशियल से हमने सोल्जर्स के नाम खत लिखवाए। उन खतों को लेकर हमने अपने पास नहीं रखा बल्कि संभाला और लेकर पहुंच गए बॉर्डर तक, क्योंकि हम चाहते थे कि फरीदाबाद की आवाज सीधे सरहद तक पहुंचे। और अब सरहद से कुछ आवाजें वापस हमारे पास आने वाली हैं। बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, और हमें सुनाएंगे जिंदगी के कुछ किस्से, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी मेमोरी शेयर करेंगे जो शायद हमारे साथ सालों तक रहने वाली है। और हमारे साथ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी जुड़ने वाले हैं, कुछ कहानियां अपनी आवाजों में लेकर आने वाले हैं। यानी एक तरफ हमारे हीरोज की मेमोरीज और दूसरी तरफ यंग जनरेशन की क्यूरियोसिटी, और बीच में है रेडियो महारानी एक ब्रिज की तरह। तो आज के दिन हम चाहते हैं आप भी इन स्टोरीज को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपने फैसले खुद ले सकें, बल्कि आजादी की कीमत समझना भी बहुत जरूरी है। और उस कीमत को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका शायद यही है कि हम उन लोगों की स्टोरी सुने जिन्होंने इस देश के लिए अपनी ड्यूटी को हमेशा ऊपर रखा। तो आज के दिन तिरंगा जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पीछे खड़ी उन कहानियों को सुनना मत भूलिएगा। मैं हूँ गीत रेडियो महारानी पर, ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

0: एम कनिका उपाध्याय और श्रीराम मॉडल स्कूल। साल था 1942। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था। पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ रही थी। पश्चिमी बंगाल के तमलुक नामक एक छोटे से इलाके में भी लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इस भीड़ की अगुवाई कर रही थी 71 साल की बुजुर्ग महिला मातंगिनी हजरा। लोगों ने प्यार से गांधीपुरी कहते थे, यानी बंगाल की गांधी। उनके हाथ में तिरंगा था और दिल में आजादी का जुनून। 29 सितंबर 1942 को हजारों लोगों का जुलूस ब्रिटिश सरकार के दफ्तर की तरफ बढ़ रहा था। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। लोगों को चेतावनी दी गई, लेकिन मातंगिनी हजरा नहीं रुकी। वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ती रही। अचानक पुलिस ने गोली चला दी। पहली गोली उनके हाथ पे लगी, लेकिन उन्होंने तिरंगा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। फिर दूसरी गोली लगी, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। और जब तीसरी गोली लगी, तब भी उनके होठों पर एक ही शब्द था,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
0: मातंगिनी हजरा जमीन पर गिर गई, लेकिन इतिहास गवाह है, उन्होंने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। 73 साल की

में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज जब हम यह सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं या फिर अकेले हैं, तो मातंगिनी हजरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति और हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। 73 साल की महिला ने दुनिया को दिखा दिया कि शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन देश के लिए धड़कने वाला दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम ब्रिगेडियर तरुण मदान और इस इंडिपेंडेंस डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक आई रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज ऑन माई यंग ऑफिसर्स कोर्स, आई गॉट अ मैसेज दैट माई फादर इज नो मोर। और सबने मदद करने की कोशिश की, छुट्टी भी मिली, गए भी, ये वो है सारा, लेकिन आप जब तक वहाँ पहुँचे तो मतलब आप अपने फादर का मुंह लास्ट टाइम भी नहीं देख सके। और तो ये एक बहुत बड़े मतलब चुनौतीपूर्ण क्षण होते हैं जिनको आदमी हमेशा याद करता है, क्योंकि डिस्टेंसेज इतने होते हैं और एक जो हमारी अपनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होता है। मैं तो इसके साथ साथ सभी जो हमारी युवा हैं, देशवासी हैं, उनको ये एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग आर्म फोर्सेज में कई बार लिखते भी हैं स्लोगन कि बी अ सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर, हम जो अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कम से कम मतलब उस देश का सम्मान करिए, अपनी जो सोसाइटी है, अपना समाज है, उसका सम्मान करिए, एक अच्छे नागरिक बनिए इस देश में। कई सारी हमारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान हम खुद कर सकते हैं। आई मीन जस्ट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग इज नॉट द सोल्यूशन। आप अपना जो है आपके अपने हाथ में वो करिए, बाकी जो सरकार है वो करेगी आपको जो उनको अपनी कठिनाइयाँ जो बतानी है वो आप बताइए, लेकिन एक सही तरीका होता है, एक सही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है आप सरकार के सामने अपनी परेशानियाँ रखते हैं और पेश करते हैं। ये हुड़दंग, कुल्हाड़ मचाना, नुकसान करना, प्रॉपर्टी तोड़ना, ये सब सही नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता है कि हमारी ये चीज़ नहीं सुनी गई है या उसकी सुनवाई नहीं हुई है, उसका तरीका है, उसका पालन करिए, लेकिन ये अल्टीमेटली नुकसान देखिए आम आदमी का ही होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना है, एक अच्छे नागरिक बनना है, और यही उम्मीद मैं आप सबसे करता हूँ। तो कृपया इसका पालन करिए एंड आई एम श्योर आर कंट्री विल प्रोग्रेस फर्दर एंड वील वर्क वंडर्स एंड वन डे वील अगेन बी ऑन द टॉप। जिसको कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत दोबारा सोने की चिड़िया ज़रूर बनेगी। इसी के साथ सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद, जय भारत।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अबीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु। लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

बहादुर जवानों, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप सभी हमारे भारत देश के नायक हैं। हमारी और हमारे देश की रक्षा करने के लिए कितने परेशानियों का सामना करते आए हैं और आप भी अपनी जान देश के लिए न्योछावर कर रहे हैं। आप सभी चाहे कड़ाके की ठंड हो, भूख की गर्मी हो, बारिश हो या तूफान हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। आप लोग मेरे क्या, हम सभी देशवासियों के लिए हीरो हैं, जिन्हें हमेशा नवाजा जाएगा। आप सभी जवानों की वजह से हम आज सुकून की सांस लेकर चैन की नींद सो रहे हैं। अपने घर से दूर रहकर, अपने घर वालों की यादें लेकर, अपनी जान दांव पर लगाकर आप देश की सरहद पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। को मेरा सैल्यूट है। आप सभी हमारे देश के चहीते हैं, जिन्हें आगे की पीढ़ियां भी कभी नहीं भुला पाएंगी। मैं मिहिका शर्मा फरीदाबाद से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, आसमान में तिरंगा हमेशा लहराते रहे।

टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 रेडियो महारानी।
5: कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

0: भारत का वीर जवान हूं मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूं मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूं मैं, भारत का वीर जवान हूं मैं। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, मैं हूं आरजे गौरव एंड आप सुन रहे हैं एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। कुछ पैगाम हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने लिखे और वो पैगाम हम लोग पहुंचा कर आए इंडियन आर्म फोर्सेस तक। एक तरफ फरीदाबाद के स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे थे और दूसरी तरफ देश की सरहद पर खड़े हमारे सोल्जर्स। बीच में था एक सिंपल सा कनेक्शन, एक लेटर, एक खत। बच्चों ने अपने मन की बात लिखी, किसी ने अपने सवाल भेजे, किसी ने अपना रिस्पेक्ट, किसी ने अपनी फीलिंग्स, और हमने इन पैगामों को पहुंचाया हमारे सैनिकों तक। लेकिन इस पूरी जर्नी में हमें सिर्फ लेटर्स नहीं मिले, हमें मिली कुछ ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि सोल्जर्स की जिंदगी सिर्फ यूनिफॉर्म, ड्यूटी और बॉर्डर तक सीमित नहीं होती। उसके पीछे होता है एक परिवार, कुछ सपने, कुछ सैक्रिफाइसेस और बहुत सारी कहानियां। और ये सारी कहानियां आज आप सुनने वाले हैं, कुछ अनसुनी कहानियां आज पूरे दिन सुनेंगे आप लोग बच्चों की जुबान में, क्योंकि ये है एक पैगाम देश के हीरोज के नाम। और कैसे हम लोग इनके खतों को लेकर बॉर्डर तक गए, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर आइए या फिर रेडियो महारानी के यूट्यूब चैनल पर जरूर जाइए। वहां जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों ने खत लिखे और किस तर्फ से उनके खत पहुंचे इंडियन आर्म फोर्सेस तक। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, दिस इज आरजे गौरव विद यू।
1: रेडियो महारानी कुछ हटके।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया, फॉर्मर चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और पूर्व उप महापौर फरीदाबाद। आज मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ अपने 79th इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस एक ऐसा नाम जो सुनते ही पूरा शरीर गदगद हो जाता है, और किसको नहीं पसंद इंडिपेंडेंस, हम सबको। इसलिए उस इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जवानी हमारे लिए गवाई है। याद रखें, भारत माता की जय आप ही की वजह से है, उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान गवाई, और हमें उस भारत माता की जय बना के रखनी है। बोलो भारत माता की जय।

हेलो, दिस इज भव्या फ्रॉम YMCA यूनिवर्सिटी। आज की आखिरी कहानी शुरू होती है एक सवाल से। सोचिए, अगर 1947 का कोई फ्रीडम फाइटर आज के भारत के स्टूडेंट्स को एक चिट्ठी लिखता तो उसमें क्या लिखा होता? शायद वो कुछ ऐसा कहता, प्रिय भारत के बच्चों, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब हम शायद इस दुनिया में नहीं होंगे। हमने अपनी जवानी जेलों में बिताई, हमने अपना परिवार छोड़ा, लाठियां खाई और कई साथियों ने तो अपनी जान तक कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक आजाद भारत में सांस ले सको। आज तुम्हारे पास स्कूल है, किताबें हैं, अपने सपने पूरे करने की आजादी है, अपनी बात कहने की आजादी है। ये सब हमें बहुत संघर्ष के बाद मिला था, इसलिए हम तुमसे एक वादा चाहते हैं, देश को कभी मत बांटना। धर्म, जाति या भाषा के नाम पर एक दूसरे से दूर मत होना। सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ना। और जब भी तिरंगा देखो, याद रखना कि इसके पीछे लाखों बलिदानों की कहानी छुपी है। हमने तुम्हें आजादी दी है, अब तुम्हारा काम है भारत को और मजबूत और बेहतर बनाना। दोस्तों, ये चिट्ठी भले ही किसी कागज पर ना लिखी गई हो, लेकिन हर शहीद के बलिदान में ये संदेश जरूर छुपा है। आजादी सिर्फ 15 अगस्त का जश्न नहीं, आजादी हर

निभाई जाने वाली एक जिम्मेदारी है। आइए वादा करें कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और अपने भारत को और बेहतर बनाएंगे।

सिनेमा का कैप्सूल। सिनेमा लवर्स, वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 9.6 एफएम, जहाँ मैं बात करती हूँ उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशन और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई एम ब्रिगेडियर तरुण मदान और इस इंडिपेंडेंस डे पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं। चुनौतीपूर्ण जो अपने जीवन में एक पल जो मैं याद करता हूँ वो है जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था, और क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और हमारी भी कुछ जवान वहाँ डिप्लॉयड थे, अनफॉर्चुनेटली मेरे दो जवान उसमें मारे भी गए। तो वो एक ऐसा पल था जो आदमी हमेशा जिंदगी में याद करता है कि मतलब कितनी कुर्बानियों के बाद जो हमने करी हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, तो आपको ये जीत हासिल हुई। और तब समझ में आता है कि देश सेवा का असली मतलब जो है वो क्या होता है। सो लाइफ इज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और जीवन में आप इनको जूझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये है कि मोटिवेशन लेवल आपका हमेशा हाई रहना चाहिए। और देखिए, हम लोग भी जब सीखते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमारे बहुत सारे उस्ताद होते हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, भले ही वो बाद में हमारे हमारे अधीन आ जाते हैं या हमारे नीचे काम करते हैं, लेकिन कई जवान ऐसे होते हैं जो एक ऐसा अच्छा उदाहरण पेश करते हैं और आप उनको उस्ताद बोलते हो, जिनसे आप सीखते हो, आप जिंदगी भर जो है उनका आदर करते हो कि उनसे आपने सीखा है, वो आपके गुरु रहे हैं, वो आपके उस्ताद रहे हैं, उन्होंने जो कुछ आप जीवन में कर रहे हो या जो भी आपने सीखा है उन्होंने आपको सिखाया है। तो ये पल हमेशा आपको याद रहते हैं और आप इनको भूल नहीं सकते, ऐसे पलों को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और घर से तो आप दूर रहते ही हो, कई बार आप मतलब ऐसे मुश्किल पल आते हैं कि आप घर भी नहीं जा पाते हो,

मेरा नाम तन्नू है और मैं जेसी बोस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। प्रिय वीर सैनिकों, सादर प्रणाम। यह पत्र लिखते समय मेरे मन में आपके लिए केवल सम्मान, आदर और गर्व की भावना है। हम शायद कभी आपसे मिल ना पाए, लेकिन हर दिन जब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार के साथ हंसते खेलते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तब हमें याद आता है कि उस सुरक्षा के पीछे आपका त्याग और बलिदान है, आपकी निस्वार्थ सेवा है। मैं जब भी टीवी या इंटरनेट पर सीमा पर तैनात सैनिकों को देखती हूँ तो मन में एक ही बात आती है कि आप अपने परिवार से दूर रहकर भी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। शायद आपके अपने लोग भी आपका इंतजार करते होंगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले देश को चुनते हैं। यह सोच कर मेरे मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। मैं आपके संघर्ष को पूरी तरह समझ तो नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपका हर दिन आसान नहीं होता, फिर भी आप बिना शिकायत अपने कर्तव्य को निभाते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप जैसे लोगों की वजह से हम निडर होकर अपने सपने देख पाते हैं और उन्हें पूरा कर पाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अबीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ है अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह कर की। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग

अगस्त को जब हम तिरंगा देख कर कहते हैं हम आजाद हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है इस आजादी की आवाज 1947 से बहुत पहले कहां कहां से उठ चुकी थी। एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल के आसपास थी। ना उसके पास कोई बड़ी सेना थी, ना आधुनिक हथियार, फिर भी अंग्रेजी हुकूमत उससे इतनी परेशान हुई कि उसके सिर पर 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। एक ऐसा युवक जो बचपन में जंगलों में बकरियां चराया करता था, बांसुरी बजाया करता था, लेकिन आगे चलकर हजारों लोगों को एकजुट कर अंग्रेजी राज को चुनौती देने लगा। उसने एक ऐसा नारा दिया जिसने देश को एकत्रित किया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदु जाना, यानी हमारा राज आए और महारानी का राज जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस शख्स के बारे में जानते हैं? अंग्रेज उससे इतना क्यों डरते थे? आखिर कौन था ये शख्स? क्या सच में एक युवा आदिवासी नेता ने अंग्रेजी सरकार की नींव को चुनौती दी थी? और उसकी मौत के बाद भी उसकी आवाज कैसे जिंदा रही आज आजादी के इस खास मौके पर? सुनिए एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे लोग सिर्फ बिरसा मुंडा नहीं धरती आबा कहते थे। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम अक्सर हम किताबों में नहीं पढ़ते, जिसके बारे में हम अक्सर नहीं जान पाते, पर ये वो शख्स है जिसने हमारी आजादी के लिए किए गए आंदोलनों की नींव रखी थी। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनिए एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक बांसुरी से, लेकिन खत्म होती है एक उलगुलान पर। ये कहानी है ऐसे योद्धा की जिसके सिर पर हम भारत की आजादी का सहरा पहना सकते हैं। तो इस योद्धा के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि

तो चलिए सुनते हैं आजादी की उस आवाज की कहानी जो 1947 से बहुत पहले जंगलों से उठी थी। हमारे लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब हम खुली हवा में सांस लेते हुए कहते हैं, हम आजाद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, इस आजाद

जंगल और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई होगी। भारत की आजादी की कहानी सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर नहीं लिखी गई, वो कहानी पहाड़ों में लिखी गई, जंगलों में लिखी गई, गांवों में लिखी गई, गांव की मिट्टी में लिखी गई। और ऐसी ही एक आवाज उठी थी छोटा नागपुर की धरती से। नाम था बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 उली हातू गांव एक गरीब मुंडा परिवार में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया बिरसा। उस समय शायद किसी

पीढ़ियों से अपनी मानता आया था, उस जमीन पर उनका अधिकार कमजोर होता जा रहा था। बिरसा के मन में एक सवाल उठा, जिस धरती पर हमारे पुरखे रहते आए हैं, उस पर हुकूमत किसी और की क्यों? यही सवाल आगे चलकर एक आंदोलन बनेगा और यही सवाल एक दिन अंग्रेजी सरकार को चुनौती देगा। बिरसा के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को देश से बाहर करना नहीं था, उसके लिए आजादी का मतलब था अपनी जमीन पर अपना अधिकार, अपने जंगल पर अपना अधिकार, अपने जीवन पर अपना फैसला और सबसे बढ़कर अपना राज। उस समय बिरसा बहुत छोटे थे, लेकिन उनके भीतर एक बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। उन्हें कभी नहीं पता था कि

एक युवक जिसने अंग्रेजी राज से सवाल करने की हिम्मत की, बिरसा ने शिक्षा हासिल की। उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, धर्म और समाज के बारे में नए विचार सुने। लेकिन बिरसा सिर्फ सुनने वालों में से नहीं थे, वो तो सवाल करते थे। और उनका सबसे बड़ा सवाल था, अगर अंग्रेजी सरकार कानून बनाती है तो क्या उन कानूनों से हमारे लोगों की जमीन छीनी जा सकती है। वो अपने आसपास हो रहे बदलावों को देख रहे थे, जमीन पर कब्जे, लगान, बेगारी, शोषण और अंग्रेजी प्रशासन की बढ़ती ताकत। बिरसा को अब समझ आने लगा था कि अगर उनका समाज अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाना चाहता है तो उसे एकजुट होना होगा। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अपना समाज मजबूत करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, शराब और सामाजिक बुराइयों से दूर रहो, अपने अधिकारों को पहचानो और सबसे महत्वपूर्ण, अन्याय के सामने झुको मत। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे, पहले कुछ लोग, फिर सैकड़ों और फिर हजारों। बिरसा अब सिर्फ एक युवक नहीं थे,

अब तो वो एक आवाज बन चुके थे, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, हम अपनी धरती किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। उनके आंदोलन का एक प्रसिद्ध उशोध था, अबुआ राज ऐते जाना, महारानी राज तुंदु जाना, जिसका मतलब था हमारा राज आए, महारानी का राज जाए। ध्यान दीजिए, ये एक बाहरी शासन को खुली चुनौती था। ये उस समय के एक आदिवासी समाज के स्वशासन की मांग थी। बिरसा कह रहे थे, हमारी जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद लेंगे, हमारे ऊपर बाहरी सत्ता का शासन क्यों। और यहीं से बिरसा का आंदोलन सामाजिक सुधार से आगे बढ़ा। सामाजिक सुधार से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिरोध बनने लगा। अब अंग्रेजी सरकार को खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अगर ये आवाज बढ़ी तो हजारों लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। और फिर 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और कहा जाता है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जानबूझकर जेल तक पैदल लिया। बाकी सबको भी सबक मिले। बिरसा लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून से लथपथ, शरीर पर चाबुक और डंडों के निशान, पर चेहरे पर एक तेज, वो तेज जो हजारों की संख्या में लोगों को प्रेरित कर रहा था। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। शायद उन्हें लगा था एक युवक को कैद करके उसकी आवाज बंद की जा सकती है, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि जेल जाने वाला बिरसा जब बाहर आएगा तो उसके साथ सिर्फ उसका शरीर नहीं होगा, उसके साथ होगा एक और बड़ा सपना, अबुआ राज। और इस अबुआ राज की कहानी अभी जारी, क्योंकि

नवंबर 1897 बिरसा जेल से बाहर आए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने फिर अपने लोगों के बीच जाना शुरू किया, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ियों में। वो लोगों से मिलते, उन्हें संगठित करते और कहते, अपने अधिकारों को पहचानो। अब उनका आंदोलन पहले से ज्यादा स्पष्ट था। ये सिर्फ समाज सुधार नहीं था, ये अंग्रेजी शासन की उस व्यवस्था को चुनौती थी जो आदिवासी समाज की जमीन और स्वतंत्रता को कमजोर कर रही थी। बिरसा अपने लोगों से कहते, अगर हम बिखरे रहेंगे तो हमें कोई भी दबा देगा, लेकिन अगर हम एकजुट हो गए तो हमारी आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे हजारों लोग उनके साथ आने लगे। अब लोग उन्हें श्रद्धा से धरती आबा कहने लगे थे, क्योंकि उनके लिए धरती सिर्फ मिट्टी नहीं थी, धरती उनकी पहचान थी, उनके पूर्वजों की विरासत थी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य थी। अब बिरसा का संदेश जंगलों से निकलकर दूर दूर तक पहुंच रहा था। अंग्रेजी शासन का विरोध करो, अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध करो, अपनी जमीन बचाओ, अपना राज स्थापित करो। और फिर 1899 का साल है। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू की। इस आंदोलन का नाम इतिहास में दर्ज हुआ, उलगुलान, महातूफान, महाविद्रोह। ये वो क्षण था जब जंगलों में रहने वाले हजारों लोग अंग्रेजी सत्ता के सामने खड़े होने वाले थे। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी और ना ही आधुनिक हथियार थे, लेकिन जो उनके पास था वो अंग्रेजी सरकार के पास भी नहीं था। अपनी धरती का विश्वास, अपने नेता पर भरोसा और आजादी की इच्छा। बिरसा जानते थे अंग्रेजी सरकार के सामने खड़ा होना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने रास्ता चुन लिया था, अब पीछे नहीं हटना था। उलगुलान आगे बढ़ने वाला था और उसके साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी चुनौती जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। और इसी इतिहास की चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि

दिसंबर 1899, जंगलों में हलचल थी, गांव में संदेश पहुंच रहे थे, लोग एकजुट हो रहे थे, और फिर बिरसा के आंदोलन ने निर्णायक रूप लिया। उलगुलान, महातूफान, ये अब एक खुला विद्रोह बन चुका था। बिरसा के अनुयायी अंग्रेजी शासन और उससे जुड़े शोषणकारी ढांचे का विरोध करने लगे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देना, अपनी जमीन और अधिकार वापस पाना, और अबुआ राज, अपना राज। ये आवाज अंग्रेजी सरकार के लिए सीधी चुनौती थी। बिरसा के अनुयायी पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों और औपनिवेशिक व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को निशाना बनाने लगे। ये संघर्ष अब हिंसक हो चुका था। उनके हाथों में पारंपरिक हथियार थे। धनुष बाण, भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां, सामने थी ब्रिटिश सेना की बंदूकें। 5 और 7 जनवरी 1900 को क्षेत्र में पुलिस और सरकारी ठिकानों पर हमलों के बाद सरकारी प्रशासन ने दमन तेज कर दिया। एक आदेश बिल्कुल साफ था, बिरसा को पकड़ो किसी भी कीमत पर। उनके सर पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया। अंग्रेजों को लगा पैसों की लालच में कोई न कोई तो बिरसा का ठिकाना बता ही देगा, लेकिन तब तक बिरसा हजारों लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। फिर आया 9 जनवरी 1900, डोंबारी बुरु, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। ब्रिटिश सैनिक पहुंचे, सामने खड़े थे बिरसा के अनुयायी, और फिर गोलियां चली। डोंबारी बुरु की गोलीबारी ने विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिरसा पकड़े नहीं गए, वो जंगलों में निकल गए। अंग्रेजों ने सोचा अब शायद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन बिरसा अभी आजाद थे, और जब तक वे आजाद थे उलगुलान की आग बुझी नहीं थी। एक युवक जिसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी अंग्रेजी साम्राज्य को लगातार चुनौती दे रहा था, क्योंकि उसकी ताकत बंदूक में नहीं लोगों के विश्वास में थी। और अंग्रेजी सरकार अब एक बात पूरी तरह से समझ चुकी थी, बिरसा को पकड़े बिना ये विद्रोह नहीं रुक पाएगा। तो आप भी इस विद्रोह का साथ ना छोड़िए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि

बुरुम्बारी बुरु की गोलीबारी के बाद अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जंगलों की तलाशी होने लगी, गांव में छापे पड़ने लगे, बिरसा के साथियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। लेकिन बिरसा वो तो जंगलों में ही गायब थे। वो कभी एक गांव में दिखाई देते तो कभी किसी पहाड़ी के पीछे, कभी रात के अंधेरे में अपने साथियों से मिलते तो कभी जंगलों के बीच से निकल जाते। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ ये नहीं थी कि बिरसा छिपे हुए थे, परेशानी ये भी थी कि लोग उन्हें छिपा रहे थे, क्योंकि बिरसा अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो उम्मीद बन चुके थे। लेकिन अंग्रेजों का दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 3 फरवरी 1900 बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस युवक को पकड़ने के लिए अंग्रेज महीनों से परेशान थे, वो अब उनकी गिरफ्त में था। उन्हें रांची के जेल ले जाया जा रहा था। और क्या आप जानते हैं कि उन्हें जेल तक पैदल ले जाया गया, वो भी बेड़ियों में जकड़कर। उनके हाथ, उनके पैर दोनों ही लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, खून से लथपथ, शरीर पर डंडों और चाबुक के निशान। लेकिन बिरसा का हौसला उतना ही बुलंद था जितना उसके अनुयायियों का था। अंग्रेजी सरकार को लगा अब उलगान खत्म हो जाएगा और बिरसा के साथियों का हौसला टूट जाएगा और अब उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी रोका नहीं जा सकता, उन्हें कभी सलाखों के पीछे कैद नहीं किया जा सकता। और क्योंकि बिरसा की आवाज अब सिर्फ एक आम शख्स की आवाज नहीं थी, वो तो अब आजादी की, अपने अधिकार की, अपनी जमीन की आवाज बन चुकी थी। हजारों नौजवान बिरसा के नक्शे कदम पर चल रहे थे, तो उनकी आवाज को दबाना इतना आसान भी नहीं था। ऐसी ही आवाजें और सुनते रहेंगे, क्योंकि

बिरसा मुंडा अब अंग्रेजी सरकार की कैद में था, रांची जेल, जिसमें एक छोटा सा कैदी और उसके सामने था पूरा ब्रिटिश साम्राज्य। अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि उन्होंने बिरसा को कैद कर लिया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने तो सिर्फ एक शरीर को कैद किया था, उसके विचारों को कैद कर पाना नामुमकिन था। बिरसा ने अपने जीवन में जिस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया था वो थी उनके लोगों की जमीन और अधिकार। उनका संघर्ष सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं था, वो चाहते तो आदिवासी समाज अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने जीवन पर अधिकार बनाए रखते। लेकिन जेल में ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ ही महीनों बाद 9 जून 1900 रांची की जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी, सोचिए सिर्फ 25 साल, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा संघर्ष। उनकी मृत्यु को लेकर बीमारी का आधिकारिक कारण बताया गया था, लेकिन उनके अनुयायियों के अनुसार ये सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये उनके नेता, उनके धरती आबा के चले जाने का दिन था। एक ऐसा युवक जिसने अपनी पूरी जिंदगी

की अपने लोगों के अधिकारों के लिए लगा दी, जिसने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी, जिसने हजारों लोगों को एकजुट किया और जिसने ये एहसास कराया कि आजादी सिर्फ राजाओं और शहरों की कहानी नहीं है, आजादी उस किसान की भी कहानी है जिसकी जमीन छीनी जा रही थी, उस आदिवासी की भी कहानी है जिनसे उनका जंगल छीना जा रहा था, और उस समाज की भी कहानी है जो अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा था। बिरसा तो चले गए, लेकिन जाते जाते अपने जैसे कई बिरसा उन्होंने इस हिंदुस्तान को तोहफे में दिए। बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ उल गुलान का तत्काल संघर्ष कमजोर पड़ गया, लेकिन जिस समस्या के खिलाफ बिरसा खड़े हुए थे वो समस्या इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। उनके आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को मजबूर किया कि वो छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी जमीन और पारंपरिक अधिकारों के सवाल पर गंभीरता से विचार करे। आने वाले वर्षों में जमीन की सुरक्षा से जुड़े कानूनों में बदलाव हुए, और बिरसा के आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत भी तो यही थी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को ये तो दिखा दिया था कि जमीन सिर्फ राजस्व का साधन नहीं, किसी समुदाय के लिए उसकी पहचान हो सकती है, उसका इतिहास हो सकती है और उसका भविष्य होती है। बिरसा मुंडा ने सिर्फ एक विद्रोह नहीं किया था, उसने अपने समाज में आत्मसम्मान जगाया था। उन्होंने लोगों से कहा था, अपनी संस्कृति को मत भूलो, अधिकारों को मत भूलो, शोषण के सामने मत झुको और अपनी धरती को बचाओ। इसलिए उनकी कहानी सिर्फ 1899 या 1900 में खत्म नहीं होती, उनकी कहानी आज भी चल रही है। आज भी जब आदिवासी अधिकारों, जल, जंगल, जमीन और स्वशासन की बात होती है तो बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले सामने आता है। 15 नवंबर उनका जन्मदिन भारत में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शायद बिरसा को याद करने का सबसे सही तरीका सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि उस सवाल को याद रखना है जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। बिरसा बहुत ही छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उनकी कहानी यूं ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वो खुद इतिहास बनाते हैं, और बिरसा मुंडा उनमें से ही एक है। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर भारत और सभी भारतवासियों की ओर से बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।

0: स्ट्रॉज, पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बाद बाकी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹਸੀਨ ਹੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਔਰ ਸਭ ਖਤਮ
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब।

0: एक्सीलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चला।

0: से बचने के लिए है।
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
0: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: मैं डॉक्टर ईशा वधावन हूँ। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फोर्टिस फरीदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। सो ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि एज अ मदर, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन, तो हम लोगों की लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू बहुत लंबी होती है, बट देर आर ओनली सो मेनी डेज इन अ वीक या फिर सो मेनी आवर्स इन अ डे, तो आप सब कुछ नहीं कर सकती हैं। बट हम मदर्स, जब कोई भी लेडी मदर बनती है, ट्रूली ब्रेन में स्टडीज हुई हैं कि चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, एक्स्ट्रा लेवल की कंपैशन वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफी बार इग्नोर कर देती हैं बाकी सबको हेल्प करते करते। इग्नोर करने में इसमें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। बट बहुत सिंपल और वैलिड पॉइंट ये है कि यू कैन ओनली पोर फ्रॉम व्हाट यू हैव, मतलब आप अपना कप भरेंगी पॉजिटिव थिंग से तो आप बाहर भी पॉजिटिविटी करेंगी। अगर आप इतनी फटीग्ड हैं, टायर्ड हैं कि आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो आप कुछ हेल्प बहुत इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगी अल्टीमेटली।
0: डॉक्टर कॉलिंग।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी हो।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो। माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अगर आपने कभी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की है तो खोसला का घोसला आपके लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। तो अब वही ट्रॉमा दोबारा बड़े पर्दे पर लौटने वाला है क्योंकि खोसला का घोसला 2 ऑफिशियली बन रही है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और ओरिजिनल कास्ट के कई चेहरे फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बार दिव्या खोसला भी कास्ट में शामिल हुई है। मतलब 2006 में खोसला परिवार अपनी जमीन के लिए परेशान था और 2026 में लगता है प्रॉपर्टी के दाम देखकर पूरी फैमिली ही परेशान होने वाली है। ये फिल्म 28 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, यानी नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और शायद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर थोड़ा फ्री का कमेंट्री भी। तो भाई, अगर पहली फिल्म देखकर आपने सोचा था काश मेरे पास भी खोसला जैसा पेशेंस होता, तो अब सीक्वल के साथ पेशेंस फिर से टेस्ट होने वाला है खोसला का घोसला 2, क्योंकि दिल्ली में घर मिलना मुश्किल है और अपनी जमीन वापस मिलना तो बॉलीवुड लेवल अचीवमेंट है। ये था सिनेमा का कैप्सूल, फिल्मों की दुनिया की वो बातें जिनमें एंटरटेनमेंट भी है और थोड़ा सा अपना भी।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकाल सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ। रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कलर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: ले
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: का
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड पेडल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है। रेडियो महारानी कुछ हटके, कुछ हटके। रेडियो महारानी
3: कुछ हटके। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

क्या मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

हस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून।

0: के लिए नहीं, जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं,

0: आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए। मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो दिल।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से सही, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े
1: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले पकड़ सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: मौत यही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिएगा सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: दूर तक जाएगा वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है है।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन है शेयार्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए हैं, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना। बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है, रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है, जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा कुछ, राधा नामयु कार्य हनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस, केवल केवल राधा राधा, परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में। राधा ये कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग छवि।